सुप्रभात। एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जयपुर का विविध भारती केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम विविध भारती जयपुर से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, बीते हुए कल की चिंता आज की रोशनी को धुंधला कर देती है। सच्ची दौलत अच्छे रिश्ते और शुद्ध विचार हैं, इसलिए हर सुबह को एक नए मौके के रूप में देखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज आप सुनिएगा इस पाठ का भाग 201। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सुनील दत्त पर। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारसनाथ से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। पर सुनिए सदा बहार नगमे और 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली। शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान में डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई। यादों की परछाइयां का 3रा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशन है दीना नाथ का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। 6:35 होने वाले हैं। आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूँ। मुझे श्री राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग वृंदावनी सारंग, आज आपको सुनवा रहे हैं राग धनाश्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को सादर प्रणाम। पिछली कड़ी में मैं आपको 19वीं शताब्दी के महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा हिंदी भाषा में रचित बंदिशों के बारे में बता रही थी। आज उनकी एक और कृति पेश करती हूँ जो राग धनाश्री में है। इसकी शैली भी कुछ ध्रुपद जैसे है। साहित्य इस प्रकार है। शीस गंग भस्म अंग अर्धंग गौरी संग, यानी कि बंदिश शिव जी की स्तुति में है। वैसे तो स्वाति तिरुनाल विष्णु भक्त थे और अधिकतर कृतियां पद्मनाभ स्वामी की स्तुति में हैं। तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वह बहुत ही मशहूर है और महाराजा के परिवार के सदस्य सदियों से यहाँ की विशेष पूजाओं में भाग लेते आए हैं। एक और बात भी बताना चाहूँगी, हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल ने जो कृतियाँ बनाई उनके अलावा 42 श्लोक, एक नवरत्न मालिका, 4 राग मालिकाएँ, 39 संस्कृत बंदिशें, ये सब भी उन्होंने बनाई। एक बंदिश तो कन्नड़ा भाषा में भी है और एक है मलयालम में। एक और है मणि प्रवालम, अर्थात अनेक भाषाओं के मिश्रण से भी बनाए हैं। इतना सब उन्होंने 34 वर्ष की आयु में ही बना ली थी। तो आइए अब आपको सुनाती हूँ धनाश्री राग में एक ध्रुपद शैली में बनाई हुई कृति। धनाश्री राग भीमपलास से मिलता जुलता है और स्वर दोनों में एक ही जैसे लगते हैं। तो सुनिए शीस गंग, स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृति।

ये थी धनाश्री राग में महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक ध्रुपद शैली की बंदिश। धनाश्री राग ज़्यादातर भीमपलास राग से मिलता जुलता है। अब सुनिए एक फिल्म संगीत जो राग भीमपलास के स्वरों पर आधारित है।

0: राग भीम पलासी पर आधारित ये गीत था। फिल्म राम राज्य से, आवाज थी सरस्वती राणे की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है।
1: तत मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्दिग्नाथ राम तत राम तत राम तत राम तत

तनिया लहकी मृदंग ढनका झट झट झट झट नागिन तेज थे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न मच तक सगन का किट झट किट झट सगन का जी सगन नदा ताधा किट झट सगन का ताधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा Da thiya thiya kat, da thiya thiya kat, da thiya thiya kat.

मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे परिवार फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल सलिल चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।
5: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
6: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
5: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
6: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
5: अब दोनों एक ही ऐप आरोप। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लता मंगेशकर की आवाज में नास्तिक फिल्म से गाना, सी रामचंद्र का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे फंटूज फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं झोला, आप बोला, अरे तू क्या है?
2: मैं

0: poca, pulla, poca, pulla.
1: Gula,
0: adi tu kya hai?
1: Main rokka gula.

0: रंगीन रातें फिल्म से आप अभी सुन रहे थे शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाज़ में गाना, केदार शर्मा के बोल, रोशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आप सबका स्वागत है हम है राही प्यार की कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आग फिल्म के इस गाने के साथ, महेंद्र कपूर और आशा भोसले के आवाज़ में, असद भोपाली के बोल और संगीत है उषा खन्ना का।

दूर करा ही। इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। ए इरशाद के बोल थे और संगीत किशोर कुमार का।

सारा सावन झूम के इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हाँ, मेरा ही प्यार के कार्यक्रम के बाकी गाने कुछ इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अगला गाना हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल रवि का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति औरत फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल, संगीत है रवि का।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने

0: एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
4: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है, हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए सबके

किसी ने क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी। गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए, और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नज़रिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे, और जी लेंगे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।

0: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।

0: एक नई खुशी।
1: जे डी एल आई है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: आवाज है सिद्धार्थ महादेवन की।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

लॉय मेंडोसा, शंकर महादेवन और इलारन की आवाज में आप सुन रहे हैं लक बाय चांस फिल्म से ये गाना। जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

टैक्सी नंबर 911 फिल्म से आप सुन रहे हैं अदनान सामी की आवाज़ में गाना विशाल ददलानी के बोल हैं और विशाल शेखर का संगीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आदा आदा। आदा आदा।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं लक्ष्य फिल्म का गाना। शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद का दिन है। आज़ादी के बाद नव भारत के निर्माण में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनकी स्मृति को सादर नमन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉ शमिका रवि को सदस्य नियुक्त किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस तरह की समिति बनाने की घोषणा की थी।
2: देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के दूसरे और तीसरे चरण के लिए करीब 688 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है। इससे जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कामों को गति मिलेगी। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण के लिए इससे पहले भी 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश भर में जल संरक्षण और जल ग्रहण विकास से जुड़े कामों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम और अन्य जन जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। कल कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बारा, पाली, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में हुए कार्यक्रमों में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया गया। प्रदेश

0: में औद्योगिक इकाइयों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। रीको और नॉन रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले प्लांट लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में रिसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का दोबारा उपयोग सीमित हो जाता है। नई योजना के तहत लगने वाले प्लांट से जल का पुनर्उपयोग हो सकेगा। योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में ऑक्सीटोसिन बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सीधे तौर पर मौत का कारण बताया है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई निष्कर्ष प्रमाणित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग ने विभिन्न दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के 37 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। श्री खेवसर ने बताया कि अब तक मिली रिपोर्ट में सभी दवाएं मानक गुणवत्ता वाली पाई गई हैं।
1: ये जो प्रसूताओं की जो डेथ हुई है वो इस इंजेक्शन के कारण नहीं हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं था। अभी जो है इक्विपमेंट्स की जो है कोलकाता से रिपोर्ट आएगी, हमें मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर कोई कमी रही है, और उसको जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हम इसके बारे में बता पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी ये जो प्रसूताओं की डेथ हुई है उसको बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने लिया है, और वो पर्सनली इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जांच होके जो एक्चुअल कारण है उसके बारे में हमें मालूम पड़ेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से जा रहे हैं। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। ये जोन जवाहर नगर में बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने जगह चिन्हित कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि शहर में रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित करने के लिए 27 वेंडिंग जोन मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन जोनों में बिना किसी गारंटी के आसान ऋण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे 5,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि योगासन को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि साल 2036 की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जाएगी। डॉ. मांडविया ने बताया कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। 4 से 8 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा।
2: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रचंड गर्मी के कारण प्रदेश में कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जा रहा है। कल 5 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। उधर कोटा में रात का तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले कई दिनों से अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है, वहीं कुछ जिलों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं।
3: तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिन में सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है, वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मौसम विभाग के अनुसार कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इस बीच झुंझुनू में कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को कुछ देर तेज बारिश हुई। ईद उल अजहा का पर्व कल मनाया जाएगा। ये त्यौहार कुर्बानी और त्याग का प्रतीक माना जाता है। हर साल ये पर्व इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हज की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह और अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाएगी। इस बीच हज

0: यात्रा 2026 में भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के अराफात मैदान में इकट्ठा हुए। एहराम पहने अकीदतमंदों ने निमरा मस्जिद में एक साथ नमाज अदा की। जायरीन आज कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने की रस्म के लिए मीना पहुंचेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। बोर्ड ने कहा कि ये मार्किंग प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। सवेरे के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब सुने FM रेडियो पिंक सिटी के कार्यक्रम।

तो ये कितनी सुंदर बात है ना कि लाइफ में ना देखो यार, सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो वैसे भी कुछ नहीं, पर अगर

क्लास और साथ में बेहतरीन आपके साथ पूरे पूरे 12 बजे तक बातें गाने हम के साथ साथ। तो कहते हैं शो की शुरुआत इस ऑसम वाले गाने के साथ, तो बस साथ रहने का, सुनते रहने का। रेडियो विंग सिटी 100.3 FM, गुलाबी नगरी के गुलाबी चैनल के साथ हैं आप।

0: सुनते रहिए गुलाबी नगर का गुलाबी चैनल 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
1: आनंद आई हॉस्पिटल हेल्थ इज वेल्थ के प्रायोजक हैं आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। चश्मे को कहें बाय बाय।
2: धूल धुआं पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल।
3: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी,
2: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
3: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9720970720।
4: 9:15 रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ मैसे ये शो हेल्थ जो वेल्थ की। तो जनाब गर्मियों का मौसम अपने साथ जहाँ बच्चों के लिए छुट्टियों की मस्ती लेकर आता है, वहीं तेज धूप, बढ़ता तापमान और गर्म हवाएं छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आती है, खासकर डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, वायरल इन्फेक्शन और खान पान से जुड़ी है। ऐसे में पेरेंट्स के मन में कई सवाल उठते हैं कि बच्चों को कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए, कौन सी चीजें खिलानी चाहिए, किन चीजों से बचाना चाहिए, नवजात शिशुओं को तेज गर्मी से कैसे सुरक्षित रखें और आखिर कौन कौन सी छोटी छोटी सावधानियां बच्चों को बीमार होने से बचा सकती है। तो आज इसी पर करेंगे बात, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से ताकि इस गर्मी के मौसम में हमारे बच्चे रहें स्वस्थ, सुरक्षित और खुश। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धनंजय मंगल, वरिष्ठ नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर।
5: थैंक यू।
4: सर अभी जिस तरह से पारा बढ़ता ही चला जा रहा है, जब हम बात नवजात शिशुओं की कर रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य पर इस चिलचिलाती गर्मियों का, इस मौसम का सीधा असर पड़ता है। तो ऐसे में अभी किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के न्यू मॉम्स, न्यू पेरेंट्स आपके पास में आ रहे हैं?
5: अभी जिस तरह का टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा है, नौतपा चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे कॉमन होते हैं, उनकी स्किन काफ़ी थिन होती है, तो टेम्परेचर को वेरिएशन को वो पूरा टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका जो इनटेक है वाटर इनटेक कंपैरेटिवली और दूसरे मौसम के हिसाब से थोड़ा बेटर होना चाहिए। तो इसमें बच्चों को इन कम्पेयर टू एडल्ट थोड़ा सा डिहाइड्रेशन के या पानी की कमी ज़्यादा होती है, बच्चा चिड़चिड़े हो जाते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इस टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को क्या, उसको पानी की कमी हो रही है, बच्चे क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि बच्चों को गर्मी लग रही है, उनके क्या साइन सिम्टम है, कि हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो जैसे नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु को यह जैसे फैन चल रहा है, गर्मी हो रही है, तो फैन से भी गर्म हवा लगती है तो ऊपर की स्किन गर्म हो जाती है। तो स्किन गर्म हो जाती है तो इसका मतलब फीवर नहीं है, लेकिन अपने को टेम्परेचर, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा बॉडी गर्म होगी, उतना एवोपरेशन होके पानी का लॉस ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बच्चे यदि 8-10 बार पेशाब जा रहे हैं, उल्टी नहीं हो रहे हैं, चिचड़ापन नहीं है, आराम से दूध पी के सो रहे हैं, इसका मतलब उनको डिहाइड्रेशन का नहीं है। दूसरा ये तो होता है सिम्टम, दूसरे होते हैं कि बिल्कुल जैसे आँखें धस जाती है, पेशाब कम हो जाता है, स्किन टर्गर लॉस कर जाते हैं, चिचड़े हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है तो कई बार दौरे भी आ जाते हैं और बच्चा बेहोश हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें इस कंडीशन तक ना पहुँचें, सीवियर डिहाइड्रेशन ना हो, तो उससे

0: बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है और किस तरह से बचाना है, डॉक्टर साहब ये भी आपने साथ में बता दिया है। डायरिया की सर अब हम बात करें तो इसके मामले भी बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। किस तरह से नियंत्रित किया जाए अगर बच्चे को डायरिया हो गया है, क्योंकि बहुत लोग घरेलू उपाय भी इसके लिए अपनाते हैं, तो विशेषज्ञ के पास कब जाना है?
1: डायरिया का मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। कई बार न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब मदर का फीड कराता है मोशन चला जाता है, वो डायरिया नहीं है। डायरिया का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, 8-10 बार मोशन जाए और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो।
0: जी,
1: लिक्विड बहुत ज़्यादा होता है, अमाउंट ज़्यादा हो। तो जब जितना ज़्यादा डिहाइड्रेशन मतलब डायरिया होगा, डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा मोशन, वाटरी मोशन जाएगा तो लूज तो उससे डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर होती है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो उससे वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। वॉमिटिंग शुरू होगी तो जो इंटेक भी नहीं होगा, इंटेक नहीं होगा तो यूरिन का आउटपुट कम होगा। तो ये सारी एक विशेष साइकिल होती है, तो उसके लिए हमें ये लिक्विड फॉर्म में या फीडिंग जो चल रही है, मदर का फीड चल रहा है या ऊपर का फीड है, जो 3 घंटे 4 घंटे में दे रहे हैं उनको 1 घंटे 2 घंटे में देना शुरू करें। ऊपर से ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, बच्चा यूरिन आउटपुट कम हो गया, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है यूरिन की वो कम हो गई है, चिड़चिड़ापन हो गया है, तो हमें ऊपर से ORS वगैरह देना चाहिए, फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। और ज़रूरत पड़े ये डॉक्टर के पास पहुँचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ प्रोबायोटिक मेडिसिन होती हैं जो घर में रख सकते हैं, जिंक है, प्रोबायोटिक्स है, ये मेडिसिन ऐसी हैं जो OTC डॉक्टर से जो प्रीवियस विजिट्स में या आप कंसल्ट करके घर में रख सकते हैं और इनको दे सकते हैं। शुरू में कोई एंटीबायोटिक शुरू में नहीं देनी है बिना डॉक्टर के कंसल्ट के। तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे और आप पूरा उसका वॉच रखें कि जैसे ही मोशन जाए तो आधा कप ORS पिला दें या फीडिंग कंटिन्यू करें।
0: जी,

0: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। मैं हूं मैसी मैत्रो आपके साथ। हेल्थ इज वेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से इस गर्मी के मौसम में, समर सीजन में, नवजात शिशुओं और बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। आखिर कौन सी छोटी छोटी सावधानियां हैं जो बच्चों को बीमार होने से बचा सकती हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर धनंजय मंगल, वरिष्ठ नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। और श्रोताओं, आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी दो फोन लाइन्स 2200 और 2800, बोले तो 2200700 एंड 2200800 पर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सर, गर्मियों के मौसम में बच्चों के लिए अगर हम खान पान की बात करें तो क्या सबसे बेहतर है जो इस समय उन्हें देना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा है, पुराने टाइम में भी कि जैसे भी गर्मी होती है ना, पहले क्या ध्यान रखते थे, पेट पदार्थ जैसे नींबू की नींबू पानी है, छाछ है, दाल, ORS, इस तरह के जो घर के चीज़ें हैं ना वो बढ़ाएं, फ्रूट्स बढ़ाएं, जितना लिक्विड और सेमी सॉलिड बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहता है।
0: जी, तो सर एक चीज़ और रहती है कि पेरेंट्स ही समझ नहीं पाते हैं कि कितना पानी जो है दिन भर में बच्चे को पीना चाहिए।
1: ये ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन है वो कैसी है। यदि बच्चे का मुँह नहीं सूख रहा है, बच्चे की आँखों में जो ड्राइनेस है वो नहीं है, बच्चे के नाक से जो एक सीक्रीशंस हैं वो नॉर्मल हैं, या स्किन टर्गन नॉर्मल वो है, यूरिन 8-10 बार जा रहा है, तो इसका मतलब उसको जो चारा है वो ठीक जा रहा है। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट कम से कम जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है 1 लीटर टू 1500 ml वाटर या लिक्विड किसी फॉर्म में मिनिमम देना है, बाकी अकॉर्डिंग टू गर्मी और रिक्वायरमेंट देना है। तो उसका ये डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, बच्चे के सिम्टम कैसे आ रहे हैं। बच्चा कंफर्ट है, आराम से यूरिन जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: जी सर, क्या बच्चों को रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम जो है, क्योंकि समर सीजन चल रहा है, तो ये देना सुरक्षित है?
1: ये एक्चुअल में देने में ऐसे कोई हार्म नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है कि घर की बनी हुई आइसक्रीम दें, घर की बनी हुई चाव फ्रिज में रख के फिर धीरे से वो एकदम से फ्रिज से निकाल के ना खिलाएं, या बाहर का अनहाइजीनिक आइसक्रीम है या पानी है वो ना दें। तो देने में, थोड़ा थोड़ा देने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एकदम से निकाला फ्रिज में से खा लिया, लगातार खाए जा रहे हैं, तो कई बार जो टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं प्लस वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, आप भी अपने सवालों के साथ

हमसे जुड़ सकते हैं हमारी फोन लाइंस 2200-700 और 2200-800, साथ ही हमारा फेसबुक पेज, वहाँ भी आप जा सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM इस नाम से हम आपको मिल जाएंगे। आज का अपडेट उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर अपने सवाल पोस्ट कर दीजिए। बात आज हम कर रहे हैं किस तरह से गर्मियों के मौसम में बच्चों की, नवजात शिशुओं की देखभाल की जानी चाहिए, क्या उनके लिए सेफ है, और आगे जानेंगे स्तनपान से जुड़ी हुई बहुत सी बातें। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर धनंजय मंगल। तो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। मैं हूँ मैसे मैत्रेयी आपके साथ।

0: धुआं, पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल।
1: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी,
0: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
1: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: नमस्कार, 31 मिनट रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं मैसे मैथ रही आपके साथ, और हेल्थ इज वेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से गर्मियों का मौसम बच्चों के लिए मस्ती के साथ साथ कई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी लेकर आता है। तो इस मौसम में कौन सी चीज़ें उन्हें खिलानी है, किन चीज़ों से बचाना है और कौन सी छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जिनका ध्यान रखना है इस समर सीजन में, और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धनंजय मंगल, वरिष्ठ नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। और श्रोताओं, अगर आपके मन में भी है कोई भी सवाल तो जुड़ सकते हैं आप हमसे हमारी फोन लाइंस के जरिए 2280 बोले तो 2200800 पर। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है, आप वहां भी आ सकते हैं और अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आज का अपडेट उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां अपना सवाल लिख दीजिए। डॉक्टर साहब, मंजू जी हमसे जुड़ी हैं और जानना चाह रही हैं ये कि इनकी बेटी के बेटी हुई है, 3 महीने की हो गई है वो अभी, और जब उसे पहला टीका लगा था उसके बाद से ये समस्या हो रही है कि उसे जो स्टूल है वो बहुत पतला हो रहा है, 8 से 10 बार उन्हें वो बच्ची जा रही है। तो क्या ये परेशानी का कारण हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, और क्या किया जाए इसके लिए?
2: मंजू जी, यही मैं पहले अभी बता रहा था कि दस्त अलग चीज़ होती है और दूध पी के और मोशन जाना अलग चीज़ होती है। ये टीका 1.5 महीने का लगा, उसके बाद से ये शुरू हो गया कि दूध पिया और मोशन चला गया या फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 8-10 बार जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ ये बच्चे का वेट बढ़ रहा है, यूरिन आउटपुट बहुत अच्छा है, 8-10 बार पेशाब जा रहे हैं, उल्टी नहीं कर रहे हैं, बच्चा दूध पी के 2 घंटे सो रहा है, तो ये सारे सिम्टम हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ओवरफ्लो है, ये लूज मोशन नहीं है। ये लूज मोशन के लिए ये फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा है, पानी पानी जा रहा है, और जो पेरिनल एरिया है एनएस के चारों तरफ का जो एरिया है वो रेडनेस है, या पेशाब कम जा रहा है, चिचड़ापन है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। और फिर भी आपको लगता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो कई बार जो फीड होता है उसमें लैक्टोज होता है, बिकॉज ऑफ सम वायरल इन्फेक्शन वो अंदर की लेयर हट जाती है, तो जहाँ से लैक्टेज एंजाइम होता है वो जो लैक्टोज मिल्क होता है, लैक्टोज वाला जो मिल्क होता है, नॉर्मल जो दूध होते हैं उसके उसको पचाने में असमर्थ होता है, तो उसकी वजह से कई बार जो फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन हो जाती है। ऐसा कुछ लगता है तो जो मैंने आपको सिम्टम बताए थे कि यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और रेडनेस लैटन के साथ में हो जाएगी, तो हमें फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज ये केवल फ्रिक्वेंसी है, दूध पी के या मोशन जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कोई परेशानी नहीं है।
1: जी श्रोताओं, आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फोन लाइंस है 2200800, साथ ही है हमारा फेसबुक पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, इस नाम से हम आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर नई माएँ जो हैं वो ये समझ नहीं पाती हैं कि उन्हें बच्चे को कब दूध पिलाना है, कितने घंटे में दूध पिलाना है और कितनी बार दूध पिलाना है, साथ ही कितने समय तक स्तनपान जो है वो करवाया जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप?
2: स्तनपान का एक्चुअल में क्या हुआ है कि उस पर डिपेंड करता है डिमांड, ऑन डिमांड फीड। सो व्हाट डज इट मीन ऑफ ऑन डिमांड फीड? ऑन डिमांड का मतलब होता है जब भी बच्चा भूखा होता है तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है कि बच्चा क्राई करता है, वो क्राई का जो तरीका है वो धीरे धीरे माँ समझने लग जाती है कि भूखा रो रहा है, तो जितना बच्चा दूध पिए वो पिलाना है। कई बार लेकिन होता क्या है कि दूध पिया, बार बार भूखा हो रहा है और दूध पता नहीं लग रहा माँ को कि दूध पूरा जा रहा है कि नहीं उसका, तो कई बार ऐसा होता है दूध पीते टाइम ये बच्चे की नाक बंद होती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, बिकॉज ऑफ, तो उसमें कई बार क्या होता है कि नाक बंद में जब दूध पिलाते हैं तो बच्चा दूध के साथ साथ एयर भी सांस भी ले रहा होता है, तो एयर चली जाती है, तो एयर चली जाती है तो छोटा सा तो स्टमक होता है, आधा हवा से भर गया आधा दूध से भरा, तो जैसे एयर बाहर आती है तो बच्चा भूखा हो जाता है और जो एयर होती है उसकी वजह से चिचड़ा हो जाता है, तो अपने को लगता है क्योंकि जैसे एयर बाहर आती है वैसे वापस भूखा हो जाता है बच्चा, वापस हो जाता है वापस फीड लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध तो पी रहा है बच्चा लेकिन उसका पूरा नहीं जा रहा है, या तो बार बार मांग रहा है, तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि दूध पीने से पहले सैलाइन नेचर ड्रॉप आती है, वो एक एक बूंद और नाक में मुँह बंद करके डाली जा सकती है, उससे नाक खुल जाएगी तो बच्चा दूध आराम से पिएगा, और दूध एक साथ नहीं पिलाएं, बीच में पिलाया डकार दिलाए, बीच में पिलाया डकार दिलाए, तो उसका मतलब ये होता है कि एयर निकल जाएगी तो बच्चा आराम से पूरा दूध पिएगा, और फिर दूध पीने के बाद डकार दिला के उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट उल्टा गोदी में लिटा सकते हैं। अब दूध पूरा पिया है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा? इसके अलग से 4 सिम्टम होते हैं, एक तो बच्चा दूध पी के 2-3 घंटे आराम से सो रहा है, यदि 8-10 बार पेशाब जा रहा है, वॉमिटिंग नहीं कर रहा है और वेट गेन कर रहा है, 10 से 20 ग्राम पर डे का वेट गेन करता है, 400 से 500 ग्राम पर मंथ वेट गेन कर रहा है, इसका मतलब बच्चा ठीक चल रहा है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
1: जी हर माँ की ख्वाहिश होती है सर कि वो अपने बच्चे को हर चीज़ जो है वो बेस्ट दे, और इसमें डायपर का चुनाव जो है वो सबसे अहम हो जाता है। तो नवजात शिशु की देखभाल में डायपर महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और डायपर के कारण होने वाले जो रैशेज हैं वो चिंता का विषय होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
2: देखो डायपर पहले ज़माने में जो कपड़े जो कपड़ों की जो छोटे छोटे डायपर बनाते थे वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अभी जैसे साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, न्यू इनोवेशंस होते हैं, तो कुछ इस तरह के डायपर आते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ड्राइनेस कम होती है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि डायपर कोई सा भी यूज करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कोकोनट ऑयल नारियल का तेल उसकी चारों तरफ लगाएं और बीच बीच में उसको खोलते रहें, ये नहीं कि कंटिन्यू 24 आवर, जब आपको लग रहा है कि घर से बाहर नहीं जाना है या दिन में उसको, तो जितना हो सके बीच में उसको खोल के रखें तो ड्राइनेस नहीं आएगी, और कोकोनट ऑयल लगाते
1: हैं। जी डायपर फ्री टाइम देना भी बेहद जरूरी है। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जान लेते हैं इनका सवाल। हेलो
3: हेलो, मैं
1: क्या जानना चाह रही हैं ज्योति जी?
3: मेरी बच्ची 3 महीने की, मैं ये जानना चाह रही थी, बहुत कम सोती है, 2 घंटे दिन में और 4-5 घंटे शाम में, ये नॉर्मल है?
2: ये कितनी बड़ी है ज्योति जी, ये बेबी कितनी बड़ी है?
3: 3 महीने की है सर।
2: 3 महीने की है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि दिन भर तो सोते हैं, रात को जगते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि इनिशियली जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है ना, जब बच्चा बॉम में होता है तो उस टाइम उसको जब मांस होती है तो बच्चे जगते हैं, बच्चे जब जगता है तो मांस सो रही होती
1: जी।
2: है, तो कई बार ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है। दूसरा, क्योंकि दिन में मतलब दिन में भी सोती है, इसका मतलब ये या तो फीड पूरा नहीं किया, तो कॉमन जो चीज़ें हैं कारण होते हैं ना, वो अपने को देखना होता है। यदि बच्चा सिर्फ जग रहा है और एक्टिव है, प्लेफुल है, तो अपने को कोई चिंता नहीं करनी है। यदि जगने के साथ साथ उसको कई प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चा इरिटेबल हो रहा है, भूखा लग रहा है, पेट फूल रहा है, या कान में हाथ डाल रहा है, या बहुत ज़्यादा मुंह पे हाथ मार रहा है, ये सारे सिम्टम होते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई परेशानी है। तो दो तरह से देखें इस चीज़ को, कि बच्चा नॉर्मल और एक्टिव हो के कम सो रहे हैं, या इरिटेट हो के, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोते और इरिटेट हो के वो कम सो रहे हैं, तो उन दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है।
1: जी अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो
4: हेलो,
1: नमस्ते, अपना नाम बताएं और सवाल पूछे।
4: हाँ मैं विमल बोल रहा हूँ।
1: क्या जानना चाह रहे हैं विमल जी?
4: मैं जानना चाहूँ, मेरा बेबी है 7 मंथ कम्प्लीट है
1: जी,
4: और उसके सेंटर पॉइंट है इसका सिर का
1: जी,
4: जहाँ लचीलापन होता है, तो वो अभी तक भी मतलब सेम एज की जब से न्यू बोर्न था।
2: ठीक है विमल जी, मैं बताता हूँ
1: क्या कहेंगे सर।
2: हाँ देखो, इसमें ये होता है, ये नॉर्मल होता है, बच्चों का जो ब्रेन बढ़ता है ना वो करीब करीब 2 साल तक बढ़ता है, तो ये जो सर की जो बोन है ना, सिर की जो बोन्स है वो अलग अलग पार्ट में होती है, तो जैसे जैसे ब्रेन बढ़ेगा 2 साल तक, 1.5 साल तक, तब तक ये बोन हमें ओपन चाहिए। ठीक है, तो ये जो आगे का हिस्सा होता है ना सॉफ्ट वाला, ये करीब 1.5 साल के आसपास ये भर देता है ये। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हमें कई बार विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, या कोई और अदर कारण होते हैं, बच्चा मतलब ग्रोथ कैसी है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फ़ोन लाइन 2200-800, साथ ही हमारा फेसबुक पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस नाम से हम आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, मालिश की जो प्रथा है वो भी हमारे यहाँ पर सदियों से चली आ रही है न्यू बॉर्न की, और ये उसकी केयर का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू भी माना जाता है, और देखा जाता है कि कुछ लोग बड़े अग्रेसिव तरीके से मालिश करते हैं बच्चे की, और बच्चा बेहद रोता है, तो सही तरीका क्या होना चाहिए मालिश का?
2: मालिश का जनरली क्या होता है, मालिश का पर्पज़ क्या होता है, काइनेस्थेटिक थेरेपी होती है ये। इसका सिर्फ ये नहीं है कि कोई डिफरेंट ऑयल हो या डिफरेंट कोई स्पेसिफिक चीज़ें हो करने के लिए मालिश
1: जी।
2: मालिश का मतलब होता है कि इसको धीरे धीरे अपने को स्किन को प्रेशर, जो नर्व्स पॉइंट होते हैं उनको प्रेशर देना होता है, और जो टच होता है मदर का, मदर या वो करती है तो उससे वो एक कनेक्टिविटी बनती है। तो मालिश ऊपर से नीचे जो नर्व्स प्रोसेस होती है, नर्व्स की प्रोसेस जो ग्रोथ होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, तो शरीर के सेंट्रल पार्ट से या ब्रेन के पार्ट से नीचे की साइड में ऊपर से नीचे मालिश करनी है, फेस पे भी पीछे से आगे की तरफ मालिश करनी है, गर्दन में ऊपर से नीचे की तरफ मालिश करनी है, और एक प्रेशर, सिंपल सुपरफिशियल नहीं, हल्का सा प्रेशर लगाते हुए धीरे धीरे करना है। कई प्रोफेशनल लोग भी होते हैं, और जो हमारी दादी मामी बड़े वाले जो ओल्ड पर्सन्स हैं, उन लोगों को धीरे धीरे बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं कि कैसे इसको मालिश करनी है। तो मालिश तो काफ़ी मतलब अहम है और करना भी चाहिए, और मालिश के साथ साथ कई बार धूप में भी अर्ली मॉर्निंग मालिश करेंगे तो उसका डबल फ़ायदा होता है, विटामिन डी भी मिलता है और कोई जॉन्डिस जो नॉर्मल जॉन्डिस होती है वो भी खत्म होती है।
1: जी, तो श्रोताओं आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फोन लाइन्स 2200-800, साथ ही हमारा फेसबुक पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस नाम से हम आपको मिल जाएंगे। आज का अपडेट, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि इस गर्मियों के सीज़न में किस तरह से बच्चों की देखभाल की जाए और क्या कुछ करना है। आगे खान पान से जुड़ी हुई और भी बातें जानेंगे डॉक्टर धनंजय मंगल से। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी,
1: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: टाइम हो गया एग्जैक्टली 9:45, सुन रहे हैं आप हेल्थ इज वेल्थ। मैं हूं मैसे मैत्रेयी आपके साथ और स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धनंजय मंगल, वरिष्ठ शिशु एवं नवजात रोग विशेषज्ञ। बात आज हम कर रहे हैं इस गर्मियों के मौसम में क्या देखभाल होनी चाहिए बच्चों की और क्या करना है क्या नहीं करना है, खान पान से जुड़ी हुई और भी बातें जान रहे हैं। डॉक्टर साहब प्रमोद जी हमसे जुड़े और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बच्चे को दूध पिलाने के लिए कोई विशेष पोस्चर होता है क्या, क्योंकि कई बार माँ बच्चे को लेट करके भी दूध पिलाती है, कई गोद में लेकर भी दूध पिलाती, तो क्या विशेष पोस्चर होता है और दूध पिलाने के बाद क्या करना है ताकि बच्चा जो है वो सही रहे, क्या कहेंगे आप?
3: आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये फीडिंग टेक्निक्स हैं जो आइडियल फीडिंग, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या पोस्चर होना चाहिए। तो जनरली कोशिश ये करें कि हमेशा मदर बैठ के पिलाएं या थोड़ा इंक्लाइंड होके, करीब 60-70 डिग्री पे इंक्लाइंड होके और ब्रेस्ट फीड कराएं। दूसरा कि बच्चे को कैसे उसको लाइंग डाउन करना है, कई बार बच्चे को सीधा नहीं लेटाना, कई बार ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं, जैसे बच्चे को आंचल से लगाएं साइड से और एक बार सीधा पकड़ के, तो अलग अलग जैसे क्रॉस कैडल होल्ड होता है, फुटबॉल क्लच होल्ड होता है, तो ये सारी साइड लाइन पोजिशन होती हैं, ये सारी पोजिशंस होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये है, अल्टीमेटली एम ये है कि माँ से मैक्सिमम टच हो और जो उसके बच्चे के रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो फीडिंग करने में काम आते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स होता है कि मदर के जैसे ही माउथ के एंगल से अपन टच करते हैं तो बच्चा उस साइड मूव करता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे को अपन दूध पिला रहे होते हैं और टच दूसरे अपोजिट साइड कर रहे होते हैं, दूसरा बच्चा दूध छोड़ देता है माँ का, तो इस टाइम माँ के आंचल को, माँ के निपल को बच्चे के माउथ के एंगल से उस अंदर की साइड से लगाएं जिससे वो बच्चा उस साइड में करे। लिटा के कभी भी लिटा के दूध नहीं पिलाएं, बैठ के दूध पिलाएं और दूध एक साथ नहीं पिलाएं। ये दूध पिला दिया, दूध डकार दिला दी, दूध पिलाया डकार दिलाया, तो उससे एयर बाहर निकलती है, बच्चा पूरा दूध पीता है। दूध पीने के बाद में बच्चे को गोदी में उल्टा या कंधे पे लिटा के 10-15 मिनट उसको बर्पिंग कराएं जिससे वो प्रॉपरली दूध पिए और परेशान।
2: जी, टीकाकरण की सर अब हम बात करें तो बच्चे के जन्म से लेकर कुछ वर्ष तक शिशु का टीकाकरण होना बेहद ज़रूरी होता है, तो कब और कितने अंतराल में टीकाकरण होना चाहिए और कुछ वैक्सीन जो कि सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है वो किस तरह से लगवाई जाए?
3: आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ये वेरी हर कॉमन जो पेशेंट्स या मदर आती हैं हमेशा उनके माइंड में रहता है कि सर सरकारी में जो लग नहीं रहे हम क्यों लगवाएं, ऑप्शनल वैक्सीन क्या होता है, कंपलसरी वैक्सीन क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको क्विक शेड्यूल बता देता हूँ। जन्म के टाइम पे 3 टीके लगते हैं, BCG का, हेपेटाइटिस का, ओरल पोलियो का, वो लगाना है। फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे DPT का और निमोनिया का, रोटा वायरस का, इस तरह का कॉम्बिनेशन टीके आते हैं, ये 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे लगते हैं। फिर लगता है 9 महीने पे MMR का और मीजल्स का, 15 महीने पे चिकन पॉक्स का और 1.5 साल पे वापस बूस्टर डोज लगती है DPT की। ये सब तो हो गए कॉमन वैक्सीन। जो सबसे सवाल का जो आंसर मुझे देना है वो है मैंडेटरी या कंपलसरी वैक्सीन्स और एक होता है ऑप्शनल वैक्सीन।
2: जी,
3: तो कौन से वैक्सीन हमें, तो इसमें थोड़ा सा सोच का फर्क है। वैक्सीन हमेशा ज़रूरी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वैक्सीन है अवेलेबल है तो हमें लगवाने ही है, क्योंकि वैक्सीन का मतलब है प्रिवेंशन। लेकिन हमें कंपलसरी वैक्सीन किनको कहते हैं? कंपलसरी वैक्सीन उनको कहते हैं जो गवर्नमेंट अपने शेड्यूल में डालती है और गवर्नमेंट उसको, दे आर बाउंड टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू थ्रू आउट द पॉपुलेशन, थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन अभी क्या होता है कि पहले कुछ वैक्सीन्स थे जो कंपलसरी में आते थे, लेकिन गवर्नमेंट पे जैसे जैसे फंड जनरेट करते गए तो वो धीरे धीरे इंक्लूड, जैसे IPV आ गया, H1N1 आ गया, निमोकोकल आ गया, रोटा वायरस आ गया, तो ये वैक्सीन जो थे पहले ये सब ऑप्शनल में थे, लेकिन धीरे धीरे आ गए। तो अभी जो गवर्नमेंट में जो वैक्सीन नहीं लग रहे हैं स्पेसिफिकली, वो वैक्सीन है फ्लू वैक्सीन है जो बड़ा कॉमन है, टाइफाइड वैक्सीन है, चिकन पॉक्स वैक्सीन है,

0: मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, ये जो कॉमन वैक्सीन है जो ज़रूरी है लेकिन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका एक ही इश्यू होता है, कॉस्टली होते हैं और प्राइवेट में लगवाने होते हैं नहीं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कम से कम आप जो गवर्नमेंट में या जो कंपलसरी वैक्सीन जिनको कहते हैं वो ज़रूर ज़रूर लगवाएं। अभी भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुकर खांसी के बच्चे बहुत आ रहे हैं क्योंकि वो पर्टुसिस के वैक्सीन नहीं लगवा रहे और डिप्थीरिया के वैक्सीन। तो इस उसमें भी सिनेरियो में भी गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है, इतना अवेलेबल कराती है, उसके बावजूद भी लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और यदि आपका बजट और वो करता है सूट करता है तो आपको बाकी वैक्सीन जो ऑप्शनल वैक्सीन हैं वो भी लगवानी चाहिए।
1: जी, कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, इनका सवाल जान लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। सर,
2: रमाकांत शर्मा बोल रहा हूँ।
1: क्या जानना चाह रहे हैं रमाकांत जी?
2: मेरा निवेदन ये है, होता है वो 4 साल का
1: जी,
2: और उससे अभी आपकी
1: अपने रेडियो सेट से दूरी बना करके बात करें रमाकांत जी।
2: जी मैम।
1: जी, आप पूछिए अपना सवाल।
2: तो उसको उसकी क्या है जो मुंह पर है ना, वो भी बहुत ज्यादा 4 साल का है,
0: मतलब क्या दिखने लगे मुझे वापस बताइए। आंखों के साथ
2: सर, मूंछों पर जो बाल होते हैं ना, वो रोए।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ,
2: वो रोए बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, तो केवल मूंछों पे ही बाल दिखने लगे या चेहरे पे भी दिख रहे हैं, या ये कांख होता है ना अंदर की साइड में, एक्सिला में भी वहाँ भी दिखने लगे हैं?
2: लेकिन बाजू पे
0: है ना, तो ये हर्सुटिज्म होता है। इसके बहुत सारे एंडोक्राइन कारण होते हैं, तो इसके लिए हमें जरूर नियर बाय जो भी बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, है ना?
1: जी डॉक्टर साहब, यदि कोई वैक्सीन की हम बात कर रहे थे, यदि कोई वैक्सीन जो है डिले हो गया है, पेरेंट्स को ध्यान नहीं रहा और थोड़ा डिले हो गया है, तो क्या चिंता का विषय हो सकता है?
0: कोई भी चिंता नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप भूल गए तो उस टाइम उस पीरियड में यदि हो जाती बीमारी तो आपके लिए परेशानी का काम हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ तो कैचअप डोज बोलते हैं इसको, तो आप इसको कैचअप डोज की तरह लगा सकते हैं।
1: जी श्रोता, आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स 2200-800 बोले तो 2200-800, साथ ही हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। टाइप करें रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, आज का अपडेट, उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना सवाल वहाँ पोस्ट कर दीजिए। डॉक्टर साहब, बच्चों को अभी गर्मियों की छुट्टियाँ जिस तरह चल रही है तो बाहर खेलने तो जाना ही है उन्हें, तो ऐसे में पेरेंट्स को कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो उस समय रखनी चाहिए, क्योंकि चिलचिलाती धूप जो है वो अभी बड़ी हो रहा है, क्या कहेंगे आप?
0: देखो, जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। हल्के फुल्के कपड़े पहने, लाइट कलर्ड कपड़े पहने, डिहाइड्रेशन मतलब जाने से पहले अच्छा पानी पिए, या कुछ जो भी छाछ, नारियल पानी, जूस, ORS, व्हाटएवर जो भी लिक्विड में अवेलेबल हो वो खूब सारा पिए। कोशिश करें बाहर घूमने जाएं तो एटलीस्ट कहीं छाया हो, पेड़ की छाया हो जहाँ थोड़ा सा, एकदम से धूप में, तेज़ धूप में नहीं निकालना। और एकदम जैसे धूप से आने के बाद में बैठे, ये नहीं कि एकदम से सीधे एसी में जाके बैठ गए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, और फ्रिक्वेंटली उसको पानी देना है, फ्रिक्वेंटली चीजें देनी।
1: जी कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, इनका सवाल जान लेते हैं। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
3: हाँ नमस्कार, मैं JP रावत बोल रहा हूँ।
1: क्या जानना चाह रहे हैं सर?
3: एक्चुअली मेरी डॉटर है, तो मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन से वैक्सीन लगाए कौन से नहीं लगाए उसके।
1: जी
3: अभी वो 18 ईयर्स की होगी, तो क्या आप लगवा सकता हूँ क्या मैं उसके?
0: देखिए, अब इसमें इसको एडोलेसेंट वैक्सीन शेड्यूल बोलते हैं। एडोलेसेंट वैक्सीन शेड्यूल का मतलब है कि जो पहले वैक्सीन्स नहीं लगे हैं उसमें अभी जो कंपलसरी वैक्सीन्स हैं वो अपने को लगाने हैं। तो उसमें कुछ वैक्सीन्स हैं जो जैसे टेटवेक वैक्सीन है, उसका शेड्यूल है, बच्ची है तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है, टाइफाइड का वैक्सीन है, न्यूमोकोकल का वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल का वैक्सीन है, DPT का बूस्टर डोज का वैक्सीन है, ये कॉमन वैक्सीन है, वो वैक्सीन हमें लगाने हैं।
1: जी श्रोता, आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। 2200-800 ये है हमारी फोन लाइन। सोरेस म्यूजिकल ब्रेक के बाद जानेंगे डॉक्टर धनंजय मंगल से कि फूड पॉइजनिंग से बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: बात हेल्थ इज वेल्थ में हम कर रहे हैं कि इस गर्मियों के मौसम में किस तरह से बच्चों की देखभाल की जाए, क्या खान पान हो. हमारे साथ हैं डॉक्टर धनंजय मंगल. डॉक्टर साहब, फूड पॉइजनिंग के मामले भी जो हैं वो कई बार गर्मियों में सामने आते हैं, तो उससे बचाने के लिए क्या क्या सावधानी पेरेंट्स को रखनी है?
1: पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि सिलेक्शन ऑफ फूड कैसा होना चाहिए. सिलेक्शन फूड में कि रखा हुआ फूड नहीं हो, बाहर का कहाँ से आप परचेज करके ला रहे हैं, बाहर से प्रॉपर हाइजीनिक है या नहीं है. तो जो भी फ्रेश चीज़ें हैं वो यूज करें, रखी हुई चीज़ें यूज नहीं करें, और लिक्विड ज़्यादा दें, गर्म पानी मतलब जो भी बॉयल को ठंडा करके करें. कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि रखी हुई है फ्रिज की बाहर निकाला. तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखना है. और कभी भी ऐसा लगे जो सबसे बाई चांस बच्चे को जैसे उल्टियां जैसे शुरू हो रही है या उस तरह का हो रहा है कि भाई उल्टी जैसा मन कर रहा है, तो अपने को फटाफट अलर्ट होना है. तुरंत उसको कोई ऐसी चीज़ें देनी है वॉमिटिंग की, और ORS वगैरह देना है कि उसको डिहाइड्रेशन या फूड पॉइजनिंग शुरू नहीं हो. और पेट में दर्द है, उल्टियाँ जैसे मन कर रहा है, लूज मोशन है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अर्लीस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन विल द बेस्ट थिंग.
0: जी, तो समर डाइट में अभी क्या क्या पेरेंट्स दे सकते हैं बच्चों को?
1: मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जितना लिक्विड देना है, जितना तरल पदार्थ देना है, चाहे वो छाछ हो, नारियल पानी हो, जूस हो, ORS हो, या कच्चे आम की जो कैरी छाछ होती है, उस तरह की चीज़ें हैं, है ना
0: जी.
1: वो जितना ज़्यादा लिक्विड दो उतना बढ़िया है.
0: जी सर, अगर बच्चे को इस समय बुखार हो जाए तो किन परिस्थितियों में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है, तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना
1: है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि बुखार है. बुखार है का मतलब क्या है कि बुखार है भी कि नहीं. गर्म होना, बुखार होना, दोनों में फर्क आना चाहिए. बुखार का मतलब होता है ये थर्मामीटर हम साइड में लगा के मेजर करते हैं, जब वो 100 और 100 से ऊपर आता है तो हम इसको बुखार कहते हैं. कई बार क्या होता है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बच्चे गर्म हो जाते हैं, पंखा चल रहा है, तेज गर्म हवा आ रही है, तो वो बच्चे शरीर से गर्म हो जाते हैं. दैट इज नॉट फीवर. वो फीवर नहीं है, क्योंकि फीवर का और हीट एग्जॉशन का दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है. यद टेम्परेचर नहीं आ रहा है, बच्चा गर्म लग रहा है, इसका मतलब गर्म है वो, बुखार नहीं है. उसका इलाज है ठंडे पानी का कपड़ा करना और लिक्विड देना, हाइड्रेशन पूरा इम्प्रूव करना. फीवर है तो वो इंटरनल है, तो टेम्परेचर में आ रहा है, तो हमें पैरासीटामोल देना है और बाकी हाइड्रेशन पूरा मेंटेन करना है.
0: जी सर, इस समय समर वेकेशन भी चल रही हैं, बहुत से बच्चे जो हैं स्विमिंग क्लासेस भी जाते हैं, तो ऐसे में रोज़ाना स्विमिंग करना सुरक्षित है? और अगर किसी तरह का कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करना है?
1: देखो, स्विमिंग जाना बहुत अच्छी बात है, गर्मियों में सब जाते हैं, बच्चों को नई स्किल सीखनी होती है, नए एंजॉय करना होता है, लेकिन हाइजीन बहुत बड़ा इशू है.
0: जी,
1: बिकॉज कई बच्चों को कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, या उसके जिस पूल में, स्विमिंग पूल में अपन जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर हाइजीन है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो ध्यान रखें, बाकी नहाने में, जाने में, स्विमिंग करने में कोई
0: दिक्कत नहीं है. डॉक्टर धनंजय मंगल, आज आपके माध्यम से इतनी जानकारी हम सभी तक पहुँचा पाए. कार्यक्रम के अंत में क्या एक मैसेज रहेगा आपका सभी पेरेंट्स के लिए?
1: ये एक ऐसा टाइम है मातृत्व या पेरेंटिंग जो जिसको बोलते हैं, चाहे पिते घर में सारे लोगों बच्चों के साथ एंजॉय करें, जो छुट्टियों का टाइम है बच्चों के साथ रुक, प्रोफेशनल और होम उसको पूरा बैलेंस करें. ये टाइम कभी जिंदगी में आता नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत बढ़िया टाइम है कि आप थोड़ा सा छुट्टी खुद भी लेके और बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ उनको समझने की कोशिश करें, तो वो लॉन्ग लास्टिंग उसका कनेक्टिविटी बना के रखें. ये मेरा
0: बहुत खूबसूरत मैसेज. और रेडियो पिंक सिटी स्टूडियो में आए, इतनी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर.
1: थैंक यू.
2: आनंद आई हॉस्पिटल हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के प्रायोजक थे आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर. चश्मे को कहें बाय बाय.
3: धूल, धुआं, पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए. रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल.
4: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी.
3: जहां फाउंडर आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी.
4: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720.
5: कुछ कहता है जयपुर,
6: कुछ कहता है जयपुर,
5: क्या कहता है जयपुर,
6: कहता है जयपुर. मैं रामनिवास बाग हूँ। फूल पत्तियाँ और हरे गलीचे के अलावा मेरा एक इतिहास भी है। तपते दिनों को राहत पहुँचाने के लिए ही तो बना था मैं। 1865 में जब बाढ़ ने तबाह किए थे घर और शहर, तब सवाई राम सिंह द्वितीय जी ने हजारों हाथों को काम देने के लिए बनवाया था मुझे। आज मैं छाया देता हूँ उन तमाम थके मुसाफिरों को जो आते हैं जयपुर में कुछ कर दिखाने का ख्वाब लिए। मेरे आंगन में अब परिंदों और जंगल के जानवरों का पूरा भरा पूरा परिवार बसता है। खुश हो जाता हूँ मैं जब कोई बच्चा मेरे दोस्त कबूतरों के साथ खेलकर खिलखिलाता है। लोग जयपुर का दिल कहते हैं मुझे, लेकिन मेरे दिल में रविंद्र मंच से लेकर अल्बर्ट हॉल तक बहुत कुछ समाया है। मेरे चिड़ियाघर का हर जानवर मेरा हिस्सा है। मैं सिर्फ बाघ नहीं हूँ, मेरी अपनी एक कहानी है, मेरा अपना भी एक किस्सा है। आप सभी की तरह मैं हूँ आपका अपना रामनिवास बाघ। रामनिवास बाघ
5: 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
7: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
8: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
7: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
8: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
9: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
10: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
11: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
10: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: रूप दी रानी गुरु रंधावा इन हीर की आवाज गाना एंजॉय किया आपने फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो दो 10:06 में हूं मैं सुमित्रा आपके साथ शुरुआत हो गई और शो की नाम है जिसका लफ्जों की पाठशाला और हर WM की GM यानी वेडनेसडे मॉर्निंग्स की गुड मॉर्निंग्स में जान मेरी जानेमन 10 से 11 इस पाठशाला में कुछ लफ्ज कुछ शब्द हम आपके लिए चुन चुन कर ले आते हैं और आपको बस उस शब्द उस लफ्ज का सही सही मतलब हमें बताना होता है वो शब्द जो है अब गाने से जुड़ा हुआ भी हो सकता है बहुत सारे गाने होते हैं ना जिसमें कुछ ऐसे अलग से कमाल के से उर्दू के अल्फाज आते हैं और अगर उनका मतलब पता चल जाए तो गाने की खूबसूरती और बढ़ जाती है तो गाने से जुड़ा भी होगा और गाने के अलावा भी हिंदी के कुछ कठिन वाले शब्द जो होते हैं वो भी आपके लिए हम चुन चुन कर ले आए हैं तो आंटी जी लगे प्रभु का नाम करते हैं आज के पहले लफ्ज़ की शुरुआत और पहला जो लफ्ज़ है वो है फिल्म सत्ते पे सत्ता का गाना बड़ी मस्ती वाला ये गाना था और इसमें जो सत्ते पे सत्ता का जो गाना है दुखी पे दुखी हो या पत्ते पे पत्ता गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता तो क्या मतलब होता है इस अलबत्ता का ये मतलब आपको मुझे बताना है अलबत्ता का मतलब क्या है
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
0: मतलब आपको बताना है अलबत्ता किसको कहते हैं मतलब क्या है अलबत्ता का जानते हैं आप तो करना है वही काम लगा दीजिए स्टूडियो नंबर 2200-800 इसके अलावा ढूंढ रहे हैं हमें हमारे फेसबुक पेज पर तो बिल्कुल मिल जाएंगे हम आपको रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM इस नाम से अभी के लिए यही वाला गाना सेट कर दिया तो साथ रहने का सुनते रहने का और बता देने का कोई फर्क नहीं अलबत्ता ये अलबत्ता का मतलब आखिर होता क्या है औसम से गाना आशा जी की आवाज़ किशोर कुमार पहुंच रहा है आपकी कानों के पास साथ रहिए सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM अलबत्ता किसको कहते हैं क्या मतलब होता है अलबत्ता का

0: लगाए अटक गया
1: क्यों
0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
2: कोई फर्क नहीं।

अनुषा मनी की आवाज में एंजॉय किया आपने एक औसम सा गाना। और लेजी लम्हे तो यार इन दिनों मतलब बने ही हुए हैं। इतनी गर्मी हो रही है, मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना, बस पूछो ही मत कितनी गर्मी हो रही है। 10:19 रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं वैसे मैत्री आपके साथ लेकर के शो लफ्जों की पाठशाला। हर बुधवार लगती है 10 से 11 लफ्जों की क्लास, जहां कुछ कमाल के लफ्ज

जांगिड़। इसके अलावा बनवारी लाल जांगिड़ जी का जवाब बिल्कुल सही, मानसरोवर से हरीश कुमार जी सही जवाब के साथ, और डी गोस्वामी साहब का जवाब भी बिल्कुल सही। अब फेसबुक पेज पर कौन कौन जुड़ा है सही जवाब के साथ, तो फेसबुक पेज पर हमसे जुड़े हैं सीटू सैनी, प्रीति अग्रवाल मालवीय नगर से, अशोक कनौजिया फ्रॉम त्रिवेणी नगर, अशोक टेलर जाड़ियों का रास्ता से, कौशल, मंजू, कविता, यामिनी, हेनू और शालू का जवाब भी बिल्कुल सही, अंकित विवेक विहार सोढ़ाला से, और रियाज सोनू अल्फेज जवाहर नगर जयपुर से, नरेश कुमार राजकुमावत लालकोठी से जुड़े हैं, संगीता अग्रवाल फ्रॉम गुजर की थड़ी बिल्कुल सही जवाब के साथ। तो अब अगले शब्द की बात कर लेते हैं, और आपको तो पता है पहले गाने से जुड़ा देती हूँ फिर गाने से हट करके देती हूँ, तो गाने से हट करके जो अगला शब्द है जिसका सही सही मतलब आपको बताना है, और हाँ ये सुनकर के आप बोलोगे क्या मैं मतलब इतना आसान। अब आप तो जानते हो मेरा तो दिल्ली कुछ ऐसा है, इजी इजी से सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। तो जी आपको मुझे बताना है कालजयी का मतलब क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा ये शब्द, आई एम श्योर सुना होगा, कालजयी, KALJAYI, कालजयी का मतलब क्या होता है, सही सही मतलब आपको बताना है। तो बता दीजिए, लगा दीजिए हमारी फ़ोन लाइंस 2200 800, बोले तो 2200800, या फिर ढूंढ रहे हो फेसबुक पेज पर और अब तक नहीं आए हो, क्योंकि मैं हर बार आपको बोलती हूँ, तो बिल्कुल आ जाओ, टाइप करो रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, आज का अपडेट दिखेगा, उसके कमेंट सेक्शन में जाना, और जाने जाना वहाँ पर अपना सही सही जवाब पोस्ट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कालजयी का मतलब क्या होता है। कालजयी बहुत बार सुना होगा ना, कालजयी रचना, हाँ देखो कितना आसान और मैंने आपके लिए बना दिया है। अभी के लिए पहुंच रहा है चिनरी चिनरी आपके कानों के पास, साथ रहने का, सुनते रहने का रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, मैं हूँ मैसे मिलत रही आपके साथ। और ये वो गाना जिसका भी मतलब नया जो है वो वर्जन आ गया है, लेकिन कुछ भी कहो ये बीवी नंबर वाला जो नंबर वन वाला जो ओरिजिनल ट्रैक है ना, इसकी बात ही कुछ और है।

0: चाचा भत्ती जी।
1: जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे।
2: अरे भतीजी ये क्या हो गया, क्या कर रही हो? अरे है क्या बताए, लट्टू लगा रही हो, ये खिलौने टांग रही हो, ये क्या है?
1: क्रिसमस ट्री है चाचा।
2: क्या
1: तुम कैसे जानोगे, तुम तो पेड़ों को काटते रहते हो, तुम्हें क्या काम पड़ा क्रिसमस ट्री से?
2: भाई देखो हम तो ईंधन के लिए काम लेते हैं भाई। अब खाना कहाँ से बनाए, तुम्हारी चुटिया से?
1: छोड़ो चाचा, आप ना मेरी मदद करो, रिबन दो मुझे।
2: ये लो रिबन बेटे। वैसे तुमने बात तो बस पते ही कही है, लकड़ी जो सूखेगी तो उसको काम मिले ठीक है, लेकिन गीला पेड़ नहीं काटना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो काटे, और हमें भी मिले अगर हम भी काटे तो।
1: अब समझे ना चाचा आप मेरी बात।
2: हाँ।
1: अब आप भी मेरे साथ पेड़ सजाने में मदद करो।
2: ये टॉफी टाका हमने और ये बन गया केरी मिस्टेरी। क्या बताया था बेटे?
1: चाचा क्रिसमस ट्री है।
2: मेरी क्रिसमस ट्री,
1: मेरी क्रिसमस चाचा। जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे।
0: चाचा
2: भतीजी।
0: चाचा भतीजी, only on Radio Pink City 100.3 FM।
3: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक नई खुशी।
1: जे डी एल आई है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दैमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
4: टाइम हो गया एग्जैक्टली 10:30, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं मैसे मैत्री आपके साथ लेके लफ्जों की क्लास। एक लफ्ज शब्द जहां हम आपको देते हैं और उसका सही सही मतलब आपको हमें बताना होता है। तो एक ऐसा ही कमाल का सा लफ्ज आपको दिया था, शब्द आपको दिया था, कालजयी। क्या मतलब होता है कालजयी का, तो सही जवाब पहले बताती हूँ, फिर किस किस ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम आप तक पहुँचा देते हैं। तो कालजयी जो समय या काल को जीत ले, जो कभी पुराना ना पड़े, और ऐसी रचना या विचार जो कि बहुत टाइम के बाद भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखे, उतना ही महत्व और अर्थ रखे जितना अपने निर्माण के समय था, उसे कहते हैं हम कालजयी। और सही जवाब किस किस ने हम तक पहुंचाया, तो हमसे जुड़े हैं हनी भाटिया खजाने वालों का रास्ता से, रेणु गोविल वैशाली नगर से, संगीत अग्रवाल फ्रॉम गुजर की थड़ी, अशोक कनुजिया फ्रॉम त्रिवेणी नगर, प्रीति अग्रवाल मालवीय नगर से, सुनीता जालानी, शिखा गुप्ता फ्रॉम बरकत नगर, इसके अलावा अमित कुमार नामा नरसिंह कॉलोनी पुरानी बस्ती से, नरेश कुमार राजकुमावत लाल कोठी से जुड़े हैं, नंदनी गुजराती मानसरोवर से बिल्कुल सही जवाब के साथ में जुड़ी हैं। इसके अलावा नरेश कुमावत जी का जवाब बगरू से ये जुड़े हैं बिल्कुल सही, और रियाज सोनू अल्फेज जवाहर नगर से बिल्कुल सही जवाब के साथ, और प्रवीण चौहान जी का जवाब भी बिल्कुल सही। और हमारी फोन लाइंस के जरिए हमसे जुड़े गौने रोड से नरेंद्र, झोटवाड़ा से महेश जांगिड़, सिरसी रोड से डी गोस्वामी जी, मानसरोवर से हरीश कुमार, और विद्याधर नगर से मोहम्मद शाहरुख बिल्कुल सही वाले जवाब के साथ। तो अब अगले लफ्ज की बात कर लेते हैं। गाने से जुड़ा हुआ ये लफ्ज है, और धूम 3 का गाना नी में कमली कमली तो बहुत बार आप सबने सुना होगा, और इस गाने में ना एक लफ्ज आता है नमी दानम। आपको बस इस शब्द का मतलब मुझे बताना है कि नमी दानम किसको कहते हैं। कमली कमली गाना बहुत बार सुना है, लेकिन नमी दानम इसमें आने वाला ये लफ्ज, इसका मतलब आपको मुझे बताना है। NAMIDANAM नमी दानम मतलब क्या होता है, नमी दानम का जानते हैं आप, तो लगा दीजिए स्टूडियो नंबर 2200 बोले तो 2200800, या फिर ढूंढ रहे हो फेसबुक पेज पर तो यार अब तक नहीं आए हो तो आ जाइए, टाइप कीजिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM आज का अपडेट, उसके कमेंट सेक्शन में जाना और जाने जाना, वहाँ पर अपना सही जवाब पोस्ट कर दीजिए और बता दीजिए नमी दानम का मतलब क्या होता है। NAMIDANAM गाना भी आप तक पहुंचा देते हैं ताकि इजी जो है आपके लिए हो जाए जवाब देना। इसमें आता है नमी दानम, तो बता दीजिए सही जवाब किसे कहते हैं नमी दानम।

0: वेडनेसडे को हम काम के पिच पर जम जाते हैं, फुल फॉर्म में आकर चौके छक्के उड़ाते हैं। रेडियो पिंक सिटी करता है सब कुछ हियर। कुछ ऐसा होता है पिंक सिटी का बुधवार, म्यूजिक अंदर और टेंशन बाहर।
1: यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या?
0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: गाने जो आपका दिल चुरा ले।
1: हाँ, चुरा के दिल तेरा, चली मैं चली।
0: गाने जिनसे प्यार हो जाए।
2: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: वो गाने जो हमेशा जहन में गूंजे।

देते हैं आपको आपके अपने फेवरेट एफएम पर, जो है 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: शब्दों की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा। 100.3 FM की ये सौगातें।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।
0: आपका साथी, आपका दोस्त, रेडियो पिंक सिटी, सुनिए रोज। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात।

10:44 रेडियो विंग सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं ऐसे मैत्रा आपके साथ लेके लफ्जों की पाठशाला. और एक कमाल का सा शब्द आपको दिया था, लफ्ज आपको दिया था, धूम थ्री का गाना नीमे कमली कमली. इसमें एक लफ्ज आता है नमी दानम, इसका मतलब आपको मुझे बताना था. तो पहले सही जवाब बताती हूँ और फिर सही जवाब किस किस ने दिया सबके नाम बताती हूँ. और ऐसा पहली बार हुआ है कि सही जवाब के लिए मैंने पूछा बताइए सही जवाब, तो सबने कहा मुझे नहीं पता, और यही था सही जवाब. नमी दानम जो है वो फारसी जबान का लफ्ज है. जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता, वैसे हम फारसी में कहते हैं नमी दानम, यानी कि मुझे नहीं पता. ये है सही जवाब. और जिस जिसने कहा कि मुझे नहीं पता सही जवाब के रूप में, उनका नाम है, शामिल होता है रामनगर से हमसे जुड़ी ममता लखोटिया जी, झोटवाड़ा से महेश जांगिड़, आर के मीना बिल्कुल सही जवाब के साथ में, मानसरोवर से हरीश जी, इसके अलावा प्रीति अग्रवाल, इनका जवाब बिल्कुल सही. और फेसबुक पेज पर कौन कौन जुड़ा है सही जवाब के साथ में, तो पहले वाला जो था काल जी उसका सही जवाब अब हम तक पहुंचा है. सीटू सैनी बिल्कुल सही जवाब सीटू सैनी जी का. इसके अलावा नमी दानम मुझे नहीं पता कहते हुए हमसे फेसबुक पेज पर जुड़ी हैं रीनू गोविल वैशाली नगर से, इसके अलावा चौमू सिटी जयपुर से सीटू सैनी जी, अशोक कनौजिया फ्रॉम त्रिवेणी नगर, और हमसे जुड़े हैं हनी भाटिया बिल्कुल सही जवाब के साथ खजाने वालों के रस्ते से, संगीत अग्रवाल फ्रॉम गुजर की थड़ी, इसके अलावा प्रीति अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब के साथ में. और बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है उन्होंने, लिखा है कि मुझे नहीं पता मैत्री जी आपका दिल इतना क्यों प्यारा है. बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी. इसके अलावा इंदु शर्मा जयपुर से बिल्कुल सही जवाब के साथ में, हरीश गुजराती मानसरोवर से बिल्कुल सही जवाब के साथ, मैं नहीं जानता कहते हुए प्रवीण चौहान बिल्कुल सही जवाब, इसके अलावा नरसिंह कॉलोनी पुरानी बस्ती से अमित कुमार नामा, और सुनीता झलानी जी, शिखा गुप्ता फ्रॉम बरकतनगर, और रिया सोनू अल्फीज जवाहर नगर जयपुर, मैं नहीं जानता कहते हुए सही जवाब के साथ में. तो अगर आपको कहना हो ना किसी को कि यार मैं नहीं जानता, तो अब ये नहीं कहेंगे, अब आप ये कहिएगा नमी दानम, फारसी जबान का ये लफ्ज है मुझे नहीं पता. तो अब अगले शब्द की बात कर लेते हैं, गाने से जरा हटकर है, मतलब अर्थ आपको बताना है. और आई एम श्योर ये तो आपने हर बार सुना होगा पढ़ा होगा और बहुत बार आपने बोला भी होगा, लेकिन एग्जैक्ट मतलब सही सही मतलब आपको मुझे बताना है कि समकालीन, समकालीन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं समकालीन, जानते हैं तो बस करना है वही काम, नंबर वही बदले नहीं. 2200-800 बोले तो 2200-800, इसके अलावा ढूंढ रहे हैं फेसबुक पेज पर तो बिल्कुल मिल जाएंगे हम रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम इस नाम से. आज का अपडेट उसी कमेंट सेक्शन में जाना और जाने जाना, वहां पर अपना सही जवाब पोस्ट कर दीजिए और बता दीजिए समकालीन का मतलब क्या होता है. अभी के लिए औसम से गाना चल झूठी पहुंच रहा है आपकी कानों के पास, साथ रहिए सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम. मैं हूं वैसे मैत्रेयी आपके साथ.

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: Great satisfaction comes from sharing with others, cause sharing is caring. So share your thoughts with 100.3 FM. Radio Pink City 100.3 FM. Kuch to khas hai, kuch to baat.

0: टाइम हो गया एग्जैक्टली 11 जुड़वा का ये ऑसम सा गाना सुना आपने. मैं हूँ ऐसे मैत्री आपके साथ और पूछा था एक सवाल, एक लफ्ज आपको दिया था, एक शब्द आपको दिया था, सही सही मतलब आपको मुझे बताना था, समकालीन इसका मतलब क्या होता है. तो समकालीन होता है एक ही समय का या एक ही काल में होने वाला, जिसे हम कहते हैं समकालीन. बहुत से लोग सही जवाब के साथ जुड़े, हमसे जुड़े मानसरोवर से हरीश जी, राम सिंह चौहान और सुरेंद्र कुमार गुर्जर सही जवाब के साथ, चौमू से हमसे जुड़े सीटू सैनी जी, नारिका फाटक से शशि बेनीवाल और महेश जांगड़ जी का जवाब भी बिल्कुल सही. अब फेसबुक पेज पर कौन कौन हमसे जुड़ा है, तो फेसबुक पेज पर हमसे जुड़े हैं चौमू सिटी जयपुर से सीटू सैनी, प्रीति अग्रवाल मालवीय नगर से, अशोक अनुजिया फ्रॉम त्रिवेणी नगर, इसके अलावा हनी भाटिया खजाने वालों का रास्ता, नंदनी गुजराती, इसके अलावा हमसे जुड़े हैं लीलाधर सोनी बिल्कुल सही जवाब के साथ, संगीत अग्रवाल फ्रॉम गुजर की थड़ी, नरेश कुमार राजकुमावत लालकोटी से, प्रवीण चौहान बिल्कुल सही जवाब के साथ, सुनीता झालानी फ्रॉम बरकत नगर बिल्कुल सही जवाब के साथ. तब वक्त हो गया है लफ्जों की पाठशाला को यहीं समेटने का और सुनहरी सौगात अगले घंटे में जुड़ने का, बेहतरीन पुराने गानों की सुनहरी सौगात. मगर उससे पहले क्या कह रहा है जयपुर, जरा ये सुन लेते हैं. तो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM.
1: क्या कहता है जयपुर,
2: मैं रामनिवास बाग हूँ. फूल पत्तियाँ और हरे गलीचे के अलावा मेरा एक इतिहास भी है. तपते दिलों को राहत पहुँचाने के लिए ही तो बना था मैं. 1865 में जब बाढ़ ने तबाह किए थे घर और शहर, तब सवाई राम सिंह द्वितीय जी ने हजारों हाथों को काम देने के लिए बनवाया था मुझे. आज मैं छाया देता हूँ उन तमाम थके मुसाफिरों को जो आते हैं जयपुर में कुछ कर दिखाने का ख्वाब लिए. मेरे आंगन में अब परिंदों और जंगल के जानवरों का पूरा भरा पूरा परिवार बसता है. खुश हो जाता हूँ मैं जब कोई बच्चा मेरे दोस्त कबूतरों के साथ खेलकर खिलखिलाता है. लोग जयपुर का दिल कहते हैं मुझे, लेकिन मेरे दिल में रविंद्र मंच से लेकर अल्बर्ट हॉल तक बहुत कुछ समाया है. मेरे चिड़ियाघर का हर जानवर मेरा हिस्सा है. मैं सिर्फ बाग नहीं हूँ, मेरी अपनी एक कहानी है, मेरा अपना भी एक किस्सा है. आप सभी की तरह मैं हूँ आपका अपना रामनिवास बाग. रामनिवास बाग
1: 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
2: सुनहरी सौगात, सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
3: नजराना भेजा किसी ने प्यार का.
2: 100.3 FM कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
0: 11:03 रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ ऐसे मैत्री आपके साथ, बेहतरीन नगमों की लेकर सुनहरी सौगात. तो जान मेरी जानेमन, पुराने हिंदी गानों की ना बात ही कुछ और थी, जहाँ हर धुन में जज्बात बसते थे, हर गीत एक कहानी कहता था और उन कहानियों में खास किरदार अक्सर अक्सर चुपचाप अपनी मौजूदगी दर्ज कराता था और वो था पियानो. जी हाँ, वही पियानो जिसकी कभी जिस पर कभी प्यार के नगमे सजते थे, तो कभी टूटे दिल की तन्हाइयाँ उतरती थी, तो कभी कोई हीरो अपने दिल का हाल सिर्फ एक धुन में बयां कर देता था. चाहे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, हम दोनों की कसक हो, या फिर दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर का प्यार भरा एहसास. पियानो सिर्फ संगीत नहीं बजाता था, वो किरदारों के दिल की आवाज़ बन जाता था. तो आज की सुनहरी सौगात में हम आपको सुनवाने वाले हैं वो बेहतरीन सदाबहार सुनहरे गीत जिनमें हीरो हीरोइन के साथ साथ पियानो ने भी निभाया एक बेहद अहम और खास किरदार. और पियानो वाले गानों की फहरिस्त में सबसे पहले जो गाना याद आता है वो सुनील दत्त साहब के दो बेहतरीन गाने मुझे याद आते हैं. पहला गाना साल 1963 में आई फिल्म गुमराह का, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों. इस गाने में सुनील दत्त साहब पियानो बजाते हैं और अशोक कुमार माला सिन्हा खड़े उनके इस बेहतरीन से गाने को सुनते हैं. दूसरा गाना है साल 1967 में आई फिल्म हमराज का, किसी पत्थर की मूरत से. जी हाँ, मोहब्बत का इरादा है. इस पूरे गाने के अंदर भी सुनील दत्त साहब पियानो बजाते नजर आए। तो अभी के लिए यही दो गाने सेट कर दिए हैं आपके लिए, आ रहे हैं बैक टू बैक, तो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। मैं हूं ऐसे मैत्रो ही आपके साथ, और आज की सुनहरी सौगात है उन गानों के नाम जहां पियानो ने निभाया है अहम किरदार, जहां हीरो या हीरोइन पूरे गाने के अंदर पियानो बजाते हुए नजर आए, जैसे कि ये वाला।

0: दिल की बात सुनने को हर पल तैयार है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: सुनहरी सौगात, सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
2: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
1: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
3: 11:15 रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं ऐसे मैत्रो, ये आपके साथ लेके सुनहरी सौगात। पुरानी फिल्मी गानों से अब में एक अहम किरदार हुआ करता था जो अब के गानों में गायब हो चला है। हालांकि उस किरदार के लिए किसी अभिनेता की जरूरत नहीं थी, मगर वो इतना महत्वपूर्ण था जितना कि कोई एक्टर, और वो किरदार था पियानो। पुराने गानों में पियानो का खास रोल होता था। इसके लिए सिचुएशन तय होती थी, बस एक पार्टी और उस पार्टी हॉल में एक बड़ा सा पियानो, एक गीत की फरमाइश, और फिर धीरे धीरे संगीत की धुनों में रिश्तों के धागों का धीरे धीरे खुलना या फिर उलझना। आज की सुनहरी सौगात में 11 से 12 हम आपको सुनवा रहे हैं वो सदाबहार गीत जिनमें हीरो हीरोइन के साथ साथ पियानो ने भी निभाया एक बेहद अहम और यादगार रोल, जहां पर हीरो या हीरोइन पूरे गाने के दौरान बस पियानो पर बैठे पियानो बजाते नजर आए। अब इस फेहरिस्त में जो गाना याद आ रहा है, सुनील दत्त साहब के दो गानों के बाद देवानंद साहब की बात करते हैं तो साल 1965 की फिल्म तीन देविया का गाना ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। देवानंद साहब बस पूरे गाने में बस पियानो बजाते नजर आते हैं और पार्टी का माहौल है, सब देवानंद साहब के इस गाने को सुनते हैं और देव साहब पियानो पर ये खूबसूरत सा गाना बजाते हैं। तो चलिए यही सुनवा रहे हैं आपको, साथ रहिए, सुनते रहिए। पहुंच रहा है ये गाना यहाँ से वहां आपके कानों तक, साथ रहने का, सुनते रहने का। आज बात पियानो वाले गानों की हम कर रहे हैं।

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: हार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली।
1: काबिज नगरी की हर सुबह खास है, मजेदार है, लाजवाब है, खुशनुमा है। साथ ही शाम को अगर आप है तन्हा तो लीजिए एफएम रेडियो पिंक सिटी की पन्हा। एवरग्रीन देवानंद की याद रखे सलाह, बनाए अपनी शाम भी रंगीन, मस्तानी, सुहानी, क्योंकि आपके साथ है एफएम रेडियो पिंक सिटी। हा हा हा हा।

0: गाना फ्रॉम द मूवी बहारें फिर भी आएगी, साल 1966, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ऑसम सा गाना एंजॉय किया आपने। और धर्मपाजी धर्मेंद्र जी इस पूरे गाने में पियानो बजाते नजर आए। अगर आपने गाने का पिक्चराइजेशन देखा है तो आपको जरूर याद होगा, सामने खड़ी रहती है माला सिन्हा और तनुजा जी और धर्मेंद्र जी पियानो बजाते नजर आते हैं। बेहतरीन पियानो वाला ये गाना।
1: सुनहरी सौगात, सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
2: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
1: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, बात है।
0: मैं हूं मैसी मैत्री आपके साथ। और पुराने फिल्मी गानों में ना पियानो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो कभी मोहब्बत की जबान बना, कभी जुदाई का दर्द, तो कभी दिल के अनकही एहसासों का सबसे खूबसूरत साथी। उन दोनों की मिठास आज भी वैसी ही है। अब हमें फिल्मों में, फिल्मी गानों में, आज के गानों में वो भव्य पियानो वाले गाने देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक टाइम था जब हमारी फिल्मों में पियानो के गाने होना ज़रूरी था, मतलब बड़ा आम था। भव्य पियानो किसी हवेली के बड़े हॉल की शान हुआ करता था। ये सिर्फ धन का प्रतीक नहीं था बल्कि शान और पसंद का भी प्रतीक था। इसकी उपस्थिति और गाने में इसके प्रस्तुतिकरण के कारण ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र या दृश्य की शोभा बढ़ाने वाली वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत व्यक्तित्व, फिल्म का एक महत्वपूर्ण किरदार बन जाता था। पहले के जितने भी गाने आप उठा करके देखिए, किसी ना किसी दूसरी फिल्म में कोई ना कोई पियानो वाला गाना आपको जरूर दिखाई देगा, सुनाई देता है। अब पियानो वाले गानों की फेहरिस्ट में सुनील दत्त साहब के गाने की बात हो गई, देवानंद साहब के गाने की बात हुई, अभी धर्मेंद्र जी का गाना आपने सुना। अब बात करते हैं शम्मी कपूर साहब के पियानो वाले गाने की। तो इस फेहरिस्ट में जो गाना मुझे याद आ रहा है वो है साल 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी का गाना, दिल के रुखे में तुझको बैठा कर। ऑसम सा ही गाना है, बड़े से पियानो पर बैठकर शम्मी कपूर साहब ये गाना गाते हैं। और आप कल्पना कीजिए बिना इस पियानो के शम्मी कपूर साहब को इस गाने को गाते हुए पिक्चराइजेशन की, तो बड़ा एक कमाल का एक्सप्रेशन है। और ये गाना यदि पियानो नहीं होता तो अधूरा सा लगता। और कमाल का ये पियानो वाला गाना है, अभी यही पहुँच रहा है आपके कानों तक। साथ रहिए, सुनते रहिए अगेन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, ब्रह्मचारी का ये गाना। और इस पूरे गाने के अंदर शम्मी कपूर साहब पियानो बजाते नजर आए। आगे और भी ऐसे गानों की करेंगे बात। साथ रहने का, सुनते रहने का। मैं हूँ ऐसे मैत्री आप।

0: आप सुन रहे हैं FM रेडियो पिंक सिटी।
1: Great satisfaction comes from sharing with others, cause sharing is caring. So share your thoughts with 100.3 FM. Radio Pink City 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। Old है पर gold है। Hey, it's oldie goldie time. इस सफर में रहिए हमारे हम सफर 100.3 FM।

0: किशोर कुमार साहब की आवाज, लाल पत्थर का गाना, औसम सा गाना, साल 1971 में फिल्माई थी लाल पत्थर। और इस गाने के अंदर अगर आपको पिक्चराइजेशन याद हो तो विनोद मेहरा साहब पियानो बजाते हैं और राजकुमार साहब उनके सामने कुर्सी लगाकर बैठे उनका गाना सुनते हैं। इस गीत गाता हूं मैं,
1: सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
2: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
1: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: 11:42 रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, मैं हूं मैसे मैत्रे आपके साथ और जान मेरी जाने मन। आज की सुनहरी सौगात में हम आपको सुनवा रहे हैं वो सदाबहार गाने जिनमें हीरो हीरोइन के साथ साथ पियानो ने भी निभाया एक बेहद अहम और यादगार किरदार। कहानी में ट्विस्ट लाना हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव हो, या फिर अपनी दिल की बात कहनी हो, हमारा हीरो निराश हो या हीरोइन को प्यार जताना हो, हीरो जिंदगी से हार चुका हो, मोहब्बत में टूट चुका हो, तो भी पियानो हाजिर है जनाब। पहले के पुराने जितने भी गाने आप देखिए, पियानो उन गानों में जरूर नजर आता था। हीरो पियानो पर बैठ करके अपने दिल का एहसास, अपने दिल का हाल बताता था। लेकिन आजकल ये पियानो वाले गाने जो हैं जरा कम हो गए, यूं कहें कि सुनाई नहीं देते या दिखाई नहीं देते हैं। पहले फिल्मों में इनके ऊपर पिक्चराइजेशन बहुत कमाल का होता था। अब पियानो वाले गानों की फहरिस्त में आगे जो गाना आता है वो है साल 1970 में आई फिल्म कटी पतंग का। राजेश खन्ना साहब इस गाने के अंदर पियानो बजाते हैं और आशा पारेख सामने खड़ी रहती हैं। गाना बिल्कुल आपको याद हो आया ही गया होगा, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, औसम से गाना। और इस पूरे गाने में राजेश खन्ना साहब ने पियानो बजाया है। आशा पारेख जी उनको देखती हैं, पहुंच रहा है यही गाना अभी यहां से वहां आपके कानों तक। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: मैं भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
3: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
4: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
3: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
6: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
5: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
7: 11:50 मैं हूँ मैसी मैत्रोई आपके साथ और सुनहरी सौगात में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वो सदाबहार गाने जिनमें हीरो हीरोइन के साथ साथ पियानो ने भी निभाया एक बेहद अहम और यादगार किरदार, जहां पर हीरो या हीरोइन पियानो पर बैठे हुए पियानो बजाते नजर आए पूरे गाने के अंदर। अब इससे पहले कि जान मेरी जाने मन, आप बोलो कि मैत्रोई तुमने तो सारे के सारे पियानो के वो वाले गाने सुना दिए जहां हमारा हीरो ही पियानो बजा रहा है और हीरोइन सामने खड़ी उसे देख रही है। तो नाजिरा बाबू मोशाय, अब बैक टू बैक उन दो गानों की बात करते हैं जहां हमारी हीरोइन पियानो बजा रही है और हीरो उसे देख रहा है। पहला गाना है साल 1966 में आई फिल्म अनुपमा का बेहतरीन सा, ऑसम सा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, धीरे धीरे मचल दिले बेकरार। और दूसरा गाना है साल 1965 में आई फिल्म वक्त से, चेहरे पे खुशी छा जाती है, जहां साधना जी पियानो बजाती नजर आती हैं और सुनील दत्त और राजकुमार उनको देखते हैं। तो यही दो गाने बैक टू बैक पहुंच रहे हैं आपके कानों के पास। सबसे पहले लता जी की आवाज में अनुपमा का ये ऑसम सा गाना। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। मैं हूं मैसे मैत्र, रहिए आपके साथ।

इसी के साथ वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, कहते ने कहा आपको टाटा बाय बाय, लेकिन हाँ लाइफ का फंडा जो ये कहता है कि जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, और जो मिला है ना जान मेरी जानेवन, बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एफएम रेडियो पिंक सिटी। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। इसके बाद 12:05 से आप राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष

0: चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमरीका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50-27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में। हर प्रतिदिन हम सजाकर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को।

हम सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा। आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

हम सुन रहे थे ये गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में, योगेश के बोल सलिल चौधरी के संगीत के साथ। अग्नि परीक्षा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ सुनते हैं गीत।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी 2

0: जून सगी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, योगेश के बोल हैं, बप्पी लहरी का है संगीत।

हम सुन रहे थे अपने पराए फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज़ में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन का 1 बजने को है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध बताया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची तय करने का अधिकार है। SIR प्रक्रिया से ही स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के साथ मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा भी समारोह में मौजूद है। विश्वविद्यालय की कुलगुरु निष्ठा जसवाल ने बताया कि समारोह में 9 स्वर्ण पदक सहित 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की जा रही हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा। CBI ने NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक CBI 13 आरोपियों को पकड़ चुकी है। वहीं 49 जगहों पर ली गई तलाशी में कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि 3 मई को हुई NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को फिर से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने संवेदनशीलता बरतते हुए लोगों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करने का आग्रह किया है। साथ ही जानवरों और पक्षियों का ध्यान रखते हुए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी का बर्तन रखने को कहा है। राज्य में जारी प्रचंड गर्मी के दौर के बीच आज राज्य के 5 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। बीकानेर और कोटा संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में आज और कल दिन का पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। इस बीच नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से झुंझुनू और सीकर में मौसम बदला। कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद हल्की बरसात हुई। झुंझुनू के नवलगढ़ में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने कल से 30 मई तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.3 MHz पर। श्रोताओं, अब आपको जोड़ते हैं राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से।
2: कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ। तो जब जो शब्द याद आए, 3 अक्षर का, 2 अक्षर का, जो भी याद आए, जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती हैं। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और उसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा, तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे। तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफ़र में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नज़रिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियाँ बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप ज़रूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है। और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना, ये थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है ज़िंदगी, फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे। और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मज़ा आया पढ़कर। ये सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे, जी बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या काए बौरात नर वा पाए बौराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा रा हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियाँ, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियाँ अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती। दूसरों की कदम के लिए अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठें तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियाँ, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफ़र चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफ़र की असली मिठास। जी बिल्कुल। और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो ज़रूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़ मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मज़ा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं हमारी सीखों के लिए। कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख की जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने एक बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज़्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य ज़रूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खो ना दूँ, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं हमें बोला गया था चाहे ज़्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आँख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नज़र में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौ गुने पढ़ा था। तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं, और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे ज़रूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन हैं।

हम सुन रहे थे सफ़र फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज़ में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। जी बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आएँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं।

और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, किसी को कुछ दो ना दो पर दो शब्द एक प्यार भरी मुस्कान दे दो, किसी को अगर किसी को और अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगी तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, उसे तो ज़्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे, एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे, किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज़ है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह आना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात, वहीं पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूँ इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूँ, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूँ। बहुत सही बात कही है। पिताजी ने कहा था, बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहें आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून, बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था, ज़रूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया, उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो, थोड़े समय के लिए सही।

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जयकिशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उध कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना।

बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, हो वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है। जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माताजी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में 3 बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ। कभी कोई भी हो, सबकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद ज़रूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथ आश्रम में दे आते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाएं तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो, अर्थात कीर्तन, सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज़ रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ। मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ़ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर ज़रूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारे श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखाया है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, और उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आँखें भी आँखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आइज भी आइज बैंक में डोनेट कर दी हैं। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आँखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? ज़रा इसका उत्तर आप दीजिएगा। और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है। गायक कलाकारों के नाम बताइए और बताइए क्या बच्चों में कि जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफ़र का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहाँ काड़ वहाँ हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है। और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी, तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही

और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियाँ और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है। जी मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटो स्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती हैं। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम हैं, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सबके बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी।

आपकी अपनी मुस्कुराहट, और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं। यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है, हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए सबके

क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नज़रिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे

0: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HAIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: What's the strength ऑफ द कैनेडा इंडिया पार्टनरशिप।
4: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।

0: businesses and between the people of the two countries.
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा पैचू बावरा फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का है संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज़ में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज़ में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज़्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें, तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो, और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
3: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
2: बिल्कुल अपने को पूरा ढक के निकले जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है ककड़ी है इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं जो सैलेड हैं वो आप जरूर खाएं, और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिए, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को बचा के रखना।
3: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में ले, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन हल्का इस तरह का रेसिपी बना ले,
2: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
3: जी,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
3: हल्का
2: वगैरह लें।
3: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को सखियों को कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे,
2: तरह तरह के व्यंजन
3: जी,
2: तरह तरह के चावल के व्यंजन,
3: तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का,
2: बिल्कुल क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
3: हाँ बिल्कुल,
2: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बना आते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
3: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
2: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
3: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहाँ देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण। हाँ। अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
2: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
3: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
2: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है, इसके और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों के संसार लेकर आए हैं,
3: तो साड़ियों के संसार आज कहाँ चलने वाले हैं।
2: आज हम साड़ी लेकर आए हैं, कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश की है।

0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमें हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
0: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने।
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी

0: कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज़्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियाँ ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज़्यादा भारी ना हो।
1: बिल्कुल, क्योंकि अब आरती रोज़मर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज़्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कम्फर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए,
0: गरिमामय लुक आए।
1: तो कलमकारी साड़ियाँ कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिज़ाइनों के लिए ये साड़ियाँ हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती हैं, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
0: बहुत बहुत सुंदर लगती हैं
1: जी।
0: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
1: जी,
0: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
1: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
0: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियाँ विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिज़ाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
1: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
0: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
1: जी।
0: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज़्यादा जटिल बना देता है।
1: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृतियों की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
0: जी। कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
1: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि ये साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
0: बहुत मेहनत है,
1: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
0: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिज़ाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है, और कलमकारी डिज़ाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिज़ाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है
0: जी। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है, फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिज़ाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं
1: जी। कलमकारी साड़ियाँ आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज़्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल लेना है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज़ धूप में कभी नहीं सुखाना है। कम आँच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे करना है।
0: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियाँ वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियाँ पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियाँ इतनी सालों तक चलती हैं कि नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बिना बिल्कुल मन

0: चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
1: बिल्कुल सही कहा। और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए GPS से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहें आसानी से देख सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयाँ मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी ऐप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
1: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी। जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
1: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चल जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और TV समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
0: बिल्कुल
1: हो रहा है।
0: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है
1: और हम शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
0: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
1: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
0: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है। और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए, गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी

0: रूप से उसमें सदृढ़ नहीं हुए तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं, हाँ, उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियाँ एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
0: ऐसे तो, गेम बना रहे हैं ना वो लोग
1: जी,
0: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है। जैसे कि बच्चों में होता है,
1: हाँ,
0: वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
1: तो ये और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें,
0: हाँ,
1: हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
0: और सबसे बड़ी बात है दीपक, कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
1: बिल्कुल, और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है। वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
0: बिल्कुल, और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार। जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था। तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी। जब से आई नेट की आंधी, सब उसमें उड़ चले। इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया। अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं। नींद उड़ गई उनकी, लेकिन रातों को भी बतियाते हैं। डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं। बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने, दवा खोज कर खाते हैं। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद
0: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आरती, हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज़ में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। और साथ में कहती हैं फ़ायदा तो मुझे यही नज़र आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आँखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आँखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज़ का एक संतुलन उन्हें ज़रूरी है।
1: ये जो चीज़ें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं, अगर कोई इफ़ेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आँखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें।

0: ठीक है, जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
1: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फ़ोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
0: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कभी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फ़ायदेमंद है कि वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आँखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना परे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
0: जी,
1: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
0: जी,
1: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
0: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीज़ें हैं
1: जी।
0: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है, और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फ़ोन चलाते थे लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध त्योहारती भी फोन भी जो होता है वो उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
1: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

लगाते बनी मन चली, छुप के छुपा के छुपी नजरें बचा के गुप चुप चली।

0: अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज़ है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि इस तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए

0: आरती देखो, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा

0: और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं चाहे तो भून लीजिए ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे के पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं। चलिए तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते हरी धनिया के पत्ते प्याज के पत्ते टमाटर आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंथ लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे बनाकर देखेंगे लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: है, समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पर बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूं। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एज काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है। और इमिडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क। आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है। हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसे ब्यूटिफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं चाहे वो सोसाइटी में हो हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
0: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
0: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
1: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज़ प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूँकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये एक ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, या आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो ज़रूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की ज़िंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके, पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक, देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको एम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि, हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी, ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है, आपको आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देख रही है और आपका कोई मिशन है, वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से. तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे.
0: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
1: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है. इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है. तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेड्सकेप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं. शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. वो कोविड से शुरू किया है. फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे. इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे. 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद. फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ. और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही. ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
0: क्या बात है.
1: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेड्सकेप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
0: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
1: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
0: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे. यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं,
1: जीतेंगे जीतेंगे. ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा।
1: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं. तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप इसे प्ले कर सकते हैं.

0: अलग अलग चला रही हैं। तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अच्छा, क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किए, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया, मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला। CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन ये कितनी ज़रूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई। आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं, बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी वो भी MOS की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है
0: जी जी।
1: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर हमारे देश में अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
0: जी।
1: तो वो एक अच्छा मकसद है, एक

0: आने में मैं 2000 की बात कर रही हूँ कि कार्डियो पल्मरी रिसेसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। सीपीआर क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था, लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो वॉचमैन हो, आज लोग ईजिली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है बट एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला अरे डॉक्टर हम सीपीआर, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फ़ायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे सीपीआर सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं वहाँ पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों की अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली. तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज़ थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या

0: एनी बोन एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी। कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लम्प, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लम्प था। तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी तब मैं बायोप्सी करूँगी तब मैं ये करूँगी। मुझे 5-10 मिनट तो उनकी यही बात चली। तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
1: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने। वो सिर्फ बोली थी अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग वैक्सिंग सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं और उस पर कटौती भी करते हैं। क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली उसका फॉलोअप उसके, तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर। 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है कुछ गड़ तो नहीं रहा है, अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है,
0: बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6-7 महीने किए और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट टाइम सेंस भी ख़त्म हो जाता है, बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, एज अ जोकिंगली, बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी।
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने वो दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट हुए
1: जी।
0: उस साइड इफ़ेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के, वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी।
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, ये हर घर की है। क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई है, एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है। और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे। जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे, लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है। वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही ये गाना

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियाँ हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज़ करें, न कि कियोस में यूज़ करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं, वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
0: जी,
1: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए
0: जी।
1: तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज़ करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी ज़िंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपलें हरी हो उठती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झड़ती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटकेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और कानाफूसी कर

लटकती रहीं पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब, मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, ये ख्वाब सिर्फ इंतज़ार होते हैं।

यादें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं, उसमें नजर आते हैं बीते समय। यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगू करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता, गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सूना सूना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

कार्यक्रम का ये पहला गीत मृत्युदंड फिल्म से आपने सुना, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ें। अगला गाना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया हुआ है, सालू जानवी के बोल खय्याम का संगीत, फिल्म का नाम त्रिशूल।

0: हम दोनों साथ रहे।
1: अनु मलिक की बनाई धुन पर कुमार सानू और चित्रा का गाया विरासत फिल्म का ये गाना है। गीतकार जावेद अख्तर।

और अब आपको सुनवाते हैं फांसी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी का गाया हुआ, साथ में सुलक्षणा पंडित की आवाज़ भी है, गुलशन बाबरा की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। ये आवाजें सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन और साथियों की है। प्रे परदेस फिल्म का गीत आनंद बख्शी का रचा हुआ, संगीत नदीम श्रवण का।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटना

0: घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए तराने नए पुराने, इस कार्यक्रम का शेष भाग। 7 रंग के सपने फिल्म का ये गाना है, समीर का लिखा हुआ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में, संगीत नदीम श्रवण का।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय, हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
5: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
4: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इन संदेशों से पहले आप सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गुलजार के बोल राजेश रोशन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं इतिहास फिल्म से समीर की रचना। संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है, गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के।

और अब आज के तराने नए पुराने कार्यक्रम के आखिर में हम किसी से कम नहीं फिल्म की कव्वाली आपको सुनवाते हैं। कलाम मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आर डी बर्मन का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री के ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने को मंजूरी दी और आरपीएससी ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। राज्य में तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज श्रीगंगानगर में दिन का पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर, फलौदी, पिलानी, बीकानेर और चूरू में तापमान 46 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा में सबसे गर्म रात रही। भीषण गर्मी से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। इस बीच प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य लेकर चलने को कहा है। सिरोही में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या बदल रही है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी से जिलेवासियों का हाल बेहाल है। दिन के समय बाजारों में लोगों की चहल पहल कम नजर आ रही है।
1: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करने, बच्चों, बुजुर्गों और अस्वस्थ व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने तथा अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचने को कहा है। साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। इधर मौसम केंद्र जयपुर ने कल श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी कई जिलों के लिए तेज गर्मी के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि SIR का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने कुछ रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची वीवीपैट से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विद्यार्थी कानून की शिक्षा का उपयोग जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने कानून की शिक्षा में राष्ट्र और समाज हित को हमेशा आगे रखने का आह्वान किया। श्री बागड़े आज जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समावेश किया जाए तो सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के नागरिक को न्याय दिलाने के लिए पुराने कानून बदलकर 3 नए कानून लाए गए हैं। इस दौरान 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, वहीं 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की ऑनलाइन डिग्रियां सौंपी गई। करौली जिले में पिछले 12 वर्ष में पानी की समस्या के हल के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। जिले की मासलपुर तहसील की भावली ग्राम पंचायत के किसान सवाई सिंह ने बताया कि तालाब निर्माण कार्य से जल संरक्षण के काम को मजबूती मिली है। केंद्र सरकार की इस पहल से क्षेत्र में हुए वर्षा जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है।
2: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेच नहीं जाता, पानी अब डट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी।
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन और हैंडलिंग के खर्च में केंद्रीय सहायता के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही राशन दुकान के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भी सहायता मानदंडों को संशोधित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात बीकानेर में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला लिया गया। गृह मंत्री ने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार को मिलकर रणनीति बनाने को कहा ताकि घुसपैठ, तस्करी, अतिक्रमण और अन्य सीमा पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 के तहत कुल 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। इनमें राज्य सेवाओं के 192 और अधीनस्थ सेवाओं के 415 पद शामिल हैं। इस भर्ती के संबंध में विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होंगे। ये आवेदन 3 जुलाई रात्रि 12 बजे तक किए जा सकते हैं। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर 9 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा।
4: करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में आज गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों और दुग्ध संघों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण से जुड़े काम किए जा रहे हैं। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने, वहीं पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गौशालाओं में वृक्षारोपण किया और पंछियों के लिए परिंडे बांधे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राहत देने से इनकार करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस अरुण मूंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। अदालत ने उसे आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री से ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दी। और RPSC ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। राज्य के उत्तरी भाग में स्थित कृषि प्रधान जिला है हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे बसा ये जिला उपजाऊ भूमि के साथ ही प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी नदी के तट पर स्थित है भटनेर किला, जो काफी पुराना और मजबूत मिट्टी से बने किलों में से एक है। इंदिरा गांधी और भाखड़ा नहर के कारण इस क्षेत्र में गेहूं, सरसों और कपास की अच्छी खेतीबाड़ी होती है। इस जिले को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। जिले की चिट्ठी में आप तक पहुंचाएंगे बीते दिनों की खास खबरें। सबसे पहले बात किसानों की। जिले में खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 108 करोड़ रुपए से अधिक का बीमा क्लेम जारी किया गया। खरीफ फसल की प्राकृतिक आपदाओं और कीटों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये राशि सीधे बैंक खातों में जमा की गई। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि किसान अपने बीमा दावे की स्थिति की जानकारी फार्मर कॉर्नर के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 144447 पर संपर्क कर भी इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि इस भुगतान से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे उन्हें आगामी खेती के लिए भी वित्तीय मजबूती मिलेगी। जिले में पिछले दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मैना वाले गांव पहुंचकर ग्राम रथ का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की। श्री पूनिया ने संगरिया क्षेत्र के शेरेका गांव में संध्या चौपाल में शिरकत की। चौपाल में ग्रामीणों ने बारदाना, फसल तुलाई और एमएसपी से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर श्री पूनिया ने उचित समाधान का आश्वासन दिया। गंगा दशमी के मौके पर जिले में बारिश के पानी को सहेजने, जल स्रोतों की सफाई

0: और मरम्मत करने तथा पानी की बचत की अलख जगाने वाला अभियान शुरू हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम रावतसर के लखू वाली हेड पर हुआ, जहां माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक, जिला प्रभारी सचिव डॉ जोगाराम और जिला कलेक्टर डॉ यादव ने जल पूजन कर और पौधा रोप कर अभियान का शुभारंभ किया। जिले में हीटवेव से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन और बस स्टैंड पर यात्रियों और कर्मचारियों को ओआरएस के पैकेट बांटे गए। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लोगों से लगातार तरल पदार्थों का सेवन करने और धूप से बचने की सलाह दी गई। वहीं प्रशासन की ओर से जिले भर में प्याऊ और परिंडे लगाने का अभियान भी शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में परिंडे बांधकर इसकी शुरूआत की। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 जून तक अवकाश रहेगा। बच्चों को दिया जाने वाला पोषाहार भी टेक होम राशन के रूप में घर घर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हीटवेव के बढ़ते असर को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रचंड गर्मी के इस दौर में चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। उधर जनगणना प्रक्रिया में लगे प्रगणकों को भी लू और तापघात से बचाव के लिए इंतजाम रखने का परामर्श दिया गया है। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों पीलीबंगा के एक वार्ड का औचक निरीक्षण कर जनगणना प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से गणना कर्मियों को सही जानकारी देकर राष्ट्रीय महत्व के इस काम में सहयोग करने की अपील की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने भी रावतसर, नोहर, भादरा और टिब्बी सहित कई क्षेत्रों में निरीक्षण कर जनगणना काम संबंधी व्यवस्थाएं जांची। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों जिले के अयालकी गांव पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास किया। ये भवन करीब 4.5 करोड़ रूपये की लागत से बनाया जाएगा। श्री दिलावर ने जिले के कई स्कूलों का मुआयना किया। उन्होंने शिक्षकों से नवाचार और नैतिक संस्कार विकसित करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। कई सरकारी स्कूल निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में सड़क हादसों में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले 9 गुड सैमरिटन को प्रशस्ति पत्र और 80,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत ये राशि मददगारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश रा घणघर हलका माए जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार किनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली रातेत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी राखण री मंजूरी दीनी। और RPSC राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवारा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकों अर्जियां देवन रो काम 4 जून शुरू भेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरबे समाचार विगतवार। राज्य रा घणखर हलका माए जोरदार तावड़ो पड़ रियो है और लू बाज रही है। आज श्री गंगानगर माए सब बत्तो 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नापीचियो। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी और फलौदी माए अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा समेत कई ठोड़ा कम से कम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो चाल रियो है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सागे कोटा माए रात्रि बगति जोरदार गर्मी रही। इन बीच प्रशासन री ओर गर्मी रो सामो करण सारू जरूरी इंतजाम कराया जा रहा है। भीलवाड़ा माए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु सगला महकमा ने तालमेल सागे काम करण बाबत कहो। लूरी फेंट माए आया मरीजा सारू अस्पताल माए न्यारी व्यवस्था राखण रा हुकम दिया चिया है। सिरोही जिला माए तेज तावड़ा और उन्ना बायराउ जिंदगी माथे घणो असर पड़ रही।

0: ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਾ ਝੁੰਝੁਨੂ ਖਬਰਨਵੀਸ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਵੜਾਉਂ ਦਿਨ ਰੀ ਬਗਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਕਮ ਵੈਗੀ ਹੈ।
1: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
0: ए बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़ती गर्मी और लू रा असर न ध्यान रखता थका जनताओं सावचेती राखण रियरज कीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री शर्मा जनताओं जरूरी मात्रा माए पानी और पीवन री दूजी चीजा काम लेवन बाबत कहो। वह बच्चा बुजुर्गा और मंदा लोगों रो खास ध्यान रखण और जोरदार तावड़ा री बगत कठे नी जावन सारूई कहो। मुख्यमंत्री परिंदा और जिनावरा सारुए दाना पानी और चारा री व्यवस्था करण रियरज कीनी। मौसम केंद्र जयपुर काल श्रीगंगानगर बीकानेर फलौदी और जैसलमेर जिला माए लू बाजन सारू चेतायो है। इसागे कई जिला माए तेज गर्मी सागे आंधी बारिश सारुई चेताईचियो है। सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग कानून वोटर लिस्टा री विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया री वैधता बरकरार रखी है। अदालत कहो कि SIR रो मकसद स्वतंत्र और निपक्ष चुनाव करावण हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचीरी पीठ लाडला साल जून महीना माए चुनाव आयोग कानून बिहार माए SIR करावण री अधिसूचना ने चुनौती देवन वाली अर्जियां माथे सुनवाई करता थका वो फैसलो सुनायो। भारतीय जनता पार्टी SIR ने पूरी तरह कानूनी करार देवन रा सुप्रीम कोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो है। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची VVPAT उन जुड़िया दिशा निर्देशों में बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां माथे सुनवाई कीनी। अदालत कहो कि इन बारा माए फैसलो लेवन रो हक चुनाव आयोग ने है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कानून री भणाई जरूरतमंद लोगां पीड़ित और वंचित तबका रा भला सारू काम लेवन बाबत कहो है। वह कानून री भणाई माए देश और समाज रा भला ने हमेशा ऊंचो राखण री अपील कीनी। श्री बागड़े आज जयपुर माए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय रा तीजा दीक्षांत समारोह माए बोल रहा हा। राज्यपाल कहो कि कानून री भणाई माए देश री सभ्यता और संस्कृति शामिल करणु कई हलका माए कामयाबी मिल सके है। इ मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो कि जनता ने न्याय दिरावण सारू जूना कानून बदल और 3 नुआ कानून लाई चिया। कार्यक्रम में 9 विद्यार्थियों ने सोनारा तमगा देर नवाजी चिया, जबकि 25,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन डिग्रियां दीरी ची। करौली जिला माए लाडला 12 साल माए पानी री समस्या सुलझावण सारू न्यारी न्यारी कोशिशा करी ची है। जिला री मासलपुर तहसील री भावली ग्राम पंचायत माए तलाव बनावण पानी बचावण रा काम ने मजबूती मिली है। गांव वाला रो कहणो है कि केंद्र सरकार री पहलू हलका माए बिरखा रो पानी भेड़ो वेवण जमी हेठे पानी रो लेवल ही ऊंचो आ रियो है।
2: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेची जाता है, पानी अब डट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली रा तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS न जारी राखण री मंजूरी दे दीनी। इसारू 25,530 करोड़ रुपया राखी चिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माई खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि ई योजनाओं राज्यां री एजेंसियां ने एक ऊं दूजा राज्य माए अनाज लावण ले जावण माए मदद मिलेला।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत पाक सरहद माथा हिफाजत रा और पुख्ता इंतजामात करण सारू काल बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक कीनी। मीटिंग में सरहद कनेरा हर जिला सारू चारी मेर निजर राखण वालों सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करण रो फैसलो करी चियो। गृहमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सरहदों 15 किलोमीटर ताई रा हल्का माए गैर कानूनी बनाई चुनाई ने रोकण रा हुकम दीना। वह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 ने असरदार तरीकों लागू करण माथे जोर दीनो। गृहमंत्री घुसपैठ तस्करी अतिक्रमण और सरहद पार वहवण वाला अपराधा माथे रोक लगावण सारू बीएसएफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और राज्य सरकार ने मिलर रणनीति बनावण सारू ही कहो। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 रातेत 607 ओहदा माथे भर्ती री अधिसूचना जारी करती नी है। इनमें राज्य सेवाओं वाला 192 और अधीनस्थ सेवाओं वाला 415 ओहदा शामिल है। भर्तियों जुड़ी विगतवार जानकारी आयोग री वेबसाइट माथे देखी जा सके है। आयोग रा सचिव बतायो के आ ओहदा सारू ऑनलाइन तरीकाऊ अर्जियां 4 जून और 3 जुलाई 2026 री रात 12 बजे ताई दी जा सकेला। ई परीक्षा रो कोर्स आयोग री वेबसाइट माथे 9 जनवरी नए जारी करतियो चियो हो। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जोधपुर में बीज कंपनियां और कारखाना री औचक जांच कीनी। इस दौरान मोटी तादाद में अमानक बीज जब्त करी जिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा कहो के बरामद करी जिया बीजा री जेनेटिक शुद्धता री जांच सारू ग्रो आउट टेस्ट GOT करायो जावेला।
4: करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रा तहत आज गौशालावां ढंडारा अस्पतालों और दूध उत्पादक संघा में खास अभियान चलाई चियो। इस दौरान पानी पर्यावरण और गायां ने बचावण जुड़िया काम करी चिया। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा गौशालावां में पौधा रोपया और परिंदा सारू परिंडा बांधिया। सवाईमाधोपुर भीलवाड़ा जैसलमेर सिरोही और सलुम्बर में न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। राजस्थान हाईकोर्ट आसाराम बापू ने नाबालिगों यौन दुराचार रा मामला में साता देवण उन्नट गयो है। हाईकोर्ट री जोधपुर पीठ रा न्यायमूर्ति अरुण मुंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित री बेंच आज मारी सजा बनाई राखण रो फैसलो सुनायो। कोर्ट आसाराम समेत 3 दोषियों री अपील माथे सुनवाई करता थका कहो कि निचली अदालत कानून सुनाई जी सजा में कोई बदलाव नहीं करियो जावेला। हालांकि अदालत वाने पोक्सो कानून रा तहत मिलर यौन दुराचार करण यौन उत्पीड़न करण और आपराधिक साजिश जुड़िया आरोपों बरी करती नो। आईपीएल क्रिकेट होड में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद बीचे एलिमिनेटर मुकाबलो खेलू जावेला। अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सरूफ वन वाला ही मुकाबला में जीतन वाली टीम शुक्रवार ने दूजा क्वालिफायर मुकाबला में गुजरात टाइटन्स सागे मैच खेलेला। होड रो फाइनल मुकाबलो 31 मई ने अहमदाबाद में खेलो जावेला। इनु पहली काल खेली जा क्वालिफायर मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स ने 92 रन हरार फाइनल में पूग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर में खास समाचार एक कर फेरु सुन ले रहो। प्रदेश रा घनखर हल्का में जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार किनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला की समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी राखण री मंजूरी दीनी। RPSC RAS रा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकों अर्जियां देवण रो काम 4 जून नु शुरू भेला। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है जय माला।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कौन व हवन सामग्री।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार कैलाश खेर। जयमाला कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं उत्सव फिल्म का गीत, रचना वसंत देव की है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक स्वर सुरेश वाडकर का।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। इस कार्यक्रम का अगला गीत उमराव जान फिल्म से हमने चुना है। शहरयार के बोल खयाम का संगीत, आवाज आशा भोसले की।

0: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
2: देवदर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
2: देवदर्शन धूप।
3: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति का गाया मिस्टर इंडिया फिल्म का यह गीत है। गीतकार जावेद अख्तर।

समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत, अभिजीत और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये दिल लगी फिल्म का गीत। जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256969696 पर।

0: अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में तेजाब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार जावेद अख्तर, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: ये आवाजें मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और सपना मुखर्जी की। विश्वात्मा फिल्म का गीत आनंद बख्शी का रचा हुआ, संगीतकार

0: एक नई खुशी।
1: जेडी लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: अनुराग

0: राग रागेश्री पर आधारित स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, रचना भरत व्यास की, संगीत आदि नारायण राव का, आवाज लता मंगेशकर की। और अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में शहनाई फिल्म का गीत जो राग पीलू पर आधारित है, बोल राजेंद्र कृष्ण के, संगीतकार रवि।
1: न झटको जुल्फ से पा

और अब श्रोताओं, राग गारा पर आधारित अभिमान फिल्म के गीत की बारी है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

आज के राग अनुराग कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत राग भैरव पर आधारित है। अनुराग फिल्म से गीत हमने चुना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत SD बर्मन का, आवाज लता मंगेशकर की।

0: इसी के साथ राग अनुराग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का तीसरा भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।
1: यार विक्रम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ।
2: हाँ, योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गजल पेश करेंगी।
3: ओह नो,
1: ओह यस,
3: आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। ओके ओके,
1: साइलेंस,
3: क्या सुनाओ? अच्छा, ऐश किया है

0: तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है विकी।
1: अरे मैंने देखा ही नहीं,
0: कहाँ खो गई थी?
1: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
0: ओह आई एम सॉरी, माफ करना, मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
1: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
0: ये लो।
1: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
0: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
1: कहाँ कीवी, तुम्ही को तो ढूंढ रहा था।
0: I don't believe you.
1: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
1: ओ सुनो अलीबा।
0: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
2: अरे कीवी। ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
0: मैं अभी आई।
3: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
1: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
3: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
1: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
3: मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
1: जाहिर है, पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
3: डोंट बी सो सीरियस, आओ
1: बाहर चलो।
3: नीना आई है।
1: ओ यस, ये साथ उसके डैडी आए हैं क्या?
3: डोंट बी स्टूपिड, उसका हस्बैंड है।
1: नहीं यार, ये तो उम्र में नीना से कम 20 साल बड़ा लगता है।
3: लगता ही नहीं है भी।
1: सच? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
3: क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता?
1: कैसे हो सकता है, मैं नीना को अच्छी तरह से जानता हूँ।
3: ये मुझे नहीं मालूम।
1: अरे भाई किसी जमाने में बहुत दोस्ती थी हमारी।
3: अच्छा।
1: जानते हो हमारी पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। उन दिनों मैं जर्मनी से लौटा ही था। एक रोज शाम को ग्रीन लाइट के बाहर मैं किसी का इंतजार कर रहा था।
3: कीवी का?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, कीवी से तो मुझे नीना ने ही बाद में इंट्रोड्यूस करवाया था, कोई और थी, तुम नहीं जानते उसे।
3: हाँ, तो फिर क्या हुआ?
1: मैं वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा था, काफी देर हो चुकी थी, वो नहीं पहुंची। तभी अचानक मैंने देखा एक लड़की भी वहां मेरी ही तरह खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी, वो भी काफी देर से खड़ी खड़ी बोर हो चुकी थी। एक आध बार हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खड़े खड़े इंतजार करते रहे। तब अचानक मेरी तरफ वो बढ़ी और मैं
0: एक्सक्यूज मी, आप शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं?
1: जी जी हाँ, किसी को यहाँ 6:30 बजे आना
0: और वो नहीं आई।
1: आई?
0: ऑफ कोर्स, अगर किसी लड़के को आना होता तो आप 10 मिनट इंतजार करके चले गए होते, और अगर आप अपनी बीवी का इंतजार कर रहे होते तो आप इतने बेचैन न होते।
1: आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है।
0: खाक, अच्छी होती तो मैं वक्त पर न पहुंचकर आधा घंटा लेट आता।
1: आई सी, आप भी किसी का?
0: जी हाँ, उसे भी 6:30 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग वक्त तय करते वक्त ये क्यों नहीं सोच लेते कि वो वक्त पर पहुँच भी सकते हैं या नहीं।
1: कई बार ऐसा भी हो जाता है, यू नो 11th आवर पर कोई काम निकल आता है।
0: काम क्या होता है, आदमी की विल स्ट्रांग होनी
1: चाहिए। देखिए अब हम दोनों को ही इंतजार करना है तो क्यों ना अंदर बैठ के किया जाए। आई मीन इफ यू डोंट माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विद मी।
0: मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं, अकेले बैठना बहुत ऑड सा लगता है।
1: मुझे भी, इसीलिए तो आइए ना।
0: चलिए।
4: सर
1: दो कॉफी, आप कुछ और लेना पसंद करेंगे?
0: नो थैंक्स, बस कॉफी ठीक रहेगी।
1: बस दो कॉफी ले आप।
4: यस सर।
0: जगह मुझे बहुत पसंद है, आप यहाँ अक्सर आते हैं?
1: नहीं नहीं, यूं ही कभी कभी। आप जिनका इंतजार कर रही थी
0: वो? फ्रेंड ऑफ माइन।
1: नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था अगर वो इस वक्त आ जाएं तो आपको मेरे साथ बैठा देखकर बुरा तो नहीं मान जाएंगे?
0: ओह नो, वो क्यों बुरा मानने लगा, उससे मेरी अपॉइंटमेंट 6:30 बजे की थी, 7 बजे की नहीं। आप अपनी बात कीजिए।
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: शुगर?
1: एक चम्मच।
0: गुड, मैं भी कॉफी में सिर्फ एक चम्मच चीनी पसंद करता।
1: मेरा ख्याल है ज्यादा मीठा डालने से कॉफी का मजा खराब हो जाता है, वैसे यूरोप में लोग कॉफी बिना चीनी और दूध के पीना ही पसंद करते हैं।
0: तो आप यूरोप आए?
1: जी हाँ, मैं हायर स्टडीज के लिए जर्मनी गया था।
0: क्या करते हैं?
1: मैं इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल्स में स्पेशलाइजेशन किया।
0: आई सी, आपने फॉरवर्ड मोटर्स का नाम तो जरूर सुना होगा।
1: जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी फर्म है,
0: मेरे डैडी ही उसके मालिक हैं।
1: ओह आई सी।
0: कॉफी अच्छी है?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: मैं भी डैडी के साथ अमेरिका गई थी, लौटते हुए यूरोप जाने का भी इरादा था, लेकिन डैडी को जल्दी इंडिया वापस पहुंचना था, बस चांस ही नहीं मिला। वहाँ कितना कुछ है देखने को।
1: बहुत, लेकिन मैं भी ज्यादा घूमा नहीं, बस पढ़ता ही रहा।
0: Really? How unlucky.
1: आपके दोस्त आए नहीं?
0: आपकी भी तो
1: वो तो बाहर से ही लौट गई होंगी।
0: Oh, I'm so sorry. मेरी वजह से आप
1: नहीं नहीं, आपसे मिलना भी तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी।
0: आपने तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा।
1: तो आइए अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर लें। मेरा नाम विक्रम है।
0: नीना, मैं साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
1: उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे।
0: ओह नो, बल्कि आपने तो मुझे और बोर होने से बचा लिया। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं
1: अभी?
0: नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस या
1: बिजनेस के लिए पैसा चाहिए मैडम, वो मेरे पास नहीं। सर्विस कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ।
0: बिग शॉट।
1: बस रोटी पानी का खर्चा चल जाता है।
0: एक पर्सनल सवाल पूछूं?
1: पूछिए।
0: आप एंगेज्ड हैं?
1: ओह नो। आप?
0: डैडी जल्दी ही मेरी शादी कर देना चाहते हैं, पर मैं अभी नहीं चाहती।
1: ठीक ही है, यू लुक स्वीपिंग।
0: आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं मिस्टर विक्रम।
1: अब आपकी और हमारी दोस्ती हो गई है। मेरा ख्याल है आप मिस्टर हटा सकती हैं। वैसे कॉलेज में यार दोस्त मुझे विकी कहकर भी पुकारते थे।
0: अच्छा?
1: जी हाँ।
0: सच बहुत मजा आया आपसे मिलकर। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, घर पर आज डिनर है, कुछ लोग आ रहे हैं।
1: ओह श्योर। बेटा बिल।
0: अगर आप बुरा न माने तो मैं दे दूं।
1: आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं।
0: अच्छा, फिर कभी मिलिएगा, कभी घर पर आ जाइए या टेलीफोन ही कर लीजिए।
1: ओह श्योर, आपसे तो हमेशा ही मिलकर खुशी होगी।
0: नाइट।
1: गुड नाइट।
3: खूब,
1: बस फिर टेलीफोन कॉफी अपॉइंटमेंट करते करते हम लोग लगभग रोज ही मिलते। एक आध बार कमला, तुम नहीं जानते हो,
3: वही जिसका तुम तब इंतजार कर रहे थे।
1: हाँ, वो भी नीना से मिली, लेकिन दोनों के बीच इतना फर्क था कि निभ ना सकी। उन दिनों मेरे दिमाग में अजीब हलचल थी, समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है, किधर जाना है। कमला ने कभी मुझसे साफ साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा था, फिर भी मैं जानता था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। नीना सिर्फ दोस्त थी, शादी होने का सफारी पैदा नहीं होता। फिर भी उससे मिलने को, उससे बातें करने को बहुत मन करता था। हम लोग ग्रीन लाइट में घंटों बैठे बेशुमार बातें किया करते। मुझे याद है एक रोज मैंने इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ी।
0: शादी विकी, मैं समझती हूँ एक अरेंजमेंट है, इसकी बुनियाद किसी भी सेंटिमेंट, मेरा मतलब है भावनाओं पर नहीं रखनी चाहिए। आज के जमाने में चाहे अच्छा समझ लो या बुरा, जिंदगी में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। और ये जो फजूल लव, प्रेम, इश्क, मोहब्बत की बातें हैं ना, सिर्फ अनपढ़ लोगों को ही अपील करती हैं। भाई कम से कम मुझे तो नहीं करती।
1: लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मैं कमला को नहीं भूल सकता।
0: क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और उसकी भी शादी नहीं हुई, और फिर भूलने की जरूरत भी क्या है, शादी के बाद भी तुम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते।
1: मैं तो जब भी ऐसी बात सोचता हूँ एक अजीब सा डिप्रेशन होता है।
0: हो सकता है, बचपन में इमेच्योर माइंड होता है ना, बस इसीलिए भावुकता हावी हो जाती है, और उस भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी दो अलग अलग चीजें। देखो ना, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ सोसाइटी में उठना बैठना है, तुम्हारे इंटरेस्ट और उसके शौक एक से होने चाहिए। भाई बुरा ना मानना विकी, बट कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू।
1: नहीं, बुरा मानने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, कई लिहाज से मैं खुद भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर मैं कितनी बातें कर सकता हूँ।
0: इसीलिए ना कि इंटेलेक्चुअली हम एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब अगर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए तो हम दोनों की।
1: छोड़ो, ऐसी बात सोचने से भी क्या फायदा।
0: क्यों नहीं विकी, आखिर क्यों नहीं? तुम इसलिए ये बात कहते हुए डरते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ।
1: ये भी एक अहम वजह है।
0: गरीब लड़की अगर किसी अमीर आदमी से शादी करके उसकी दौलत में शेयर कर सकती है, तो तुम मेरी दौलत से भागते क्यों?
1: छोड़ो नीना, मुझे उलझन होती है।
0: तुम्हें अपने आप पर एतबार नहीं है विकी?
1: हो सकता है, लेकिन लेकिन जाने क्यों मुझे ये लगता है ये कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारे डैडी,
0: मेरे डैडी को मेरी खुशी चाहिए, और अपनी खुशी के लिए मुझे तुमसे बढ़कर और क्या मिल सकता है।
1: नीना,
0: सिर्फ एक बार विकी, प्लीज मेरे साथ चलकर डैडी से मिल लो।
1: अच्छा,
0: अभी, आज ही, इसी वक्त।
1: इसी वक्त? ये कौन सा वक्त है, डिनर टाइम हो रहा है।
0: नहीं, अभी अभी।
1: अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, चलो।

यादों की परछाइयाँ, इस नाटक का अभी आपने तीसरा भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग कल सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। अगला कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत उड़ान फिल्म के गीत से। संगीतकार अमित त्रिवेदी, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, आवाजें अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की।

कार्यक्रम का अगला गाना महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में है, शकील आजमी के बोल, चिरंदन भट्ट का संगीत, फिल्म का नाम 1920 एविल रिटर्न्स।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलयकुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दैमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत, प्रायोजक वीकू वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
4: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीकू वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।

शान की आवाज में आप सुन रहे थे तुम मिलो तो सही। इस फिल्म का शीर्षक गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ, संगीतकार संदेश शांडिल्य। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। बेवकूफियां इस फिल्म के लिए अन्विता दत्त का लिखा ये गीत श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में है। संगीतकार रघु दीक्षित।

नेहा कक्कड़ और विशाल मिश्रा की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार राजशेखर, संगीत विशाल मिश्रा का। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब

0: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला 3रा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण

0: पदक जीता और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय बालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तप धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत नाइट इन लंदन फिल्म से, आनंद बख्शी के बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गायक स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगले गीत में मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले की आवाज़ है। लाट साहब फिल्म के ये गीत हसरत जयपुरी का रचा हुआ है, धुन शंकर जयकिशन की।

0: जरा छुप जा।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
6: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गाना हमराज फिल्म से हमने चुना है। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

फर्ज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपके लिए कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं CID 909 इस फिल्म का गाना, SH बिहारी का लिखा हुआ, धुन OP नैयर की है, गायक कलाकार आशा भोसले और महेंद्र कपूर।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

कैफी आजमी के बोल खयाम का संगीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आखिरी खत फिल्म का गीत। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला, तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ,
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा कोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी? आमा, बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो, एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा, तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।

दोस्तों। 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया, लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS। ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छाया की।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहाँ, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों? खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

0: जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।
1: बिल्कुल

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है। न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ। काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

0: 103 MHz पर आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, ये समाचारों का समय है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: सौ 3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की विविध भारती सेवा के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब आज का प्रसारण समाप्त करते हैं। आपसे अगली भेंट कल सुबह 5:53 पर होगी। शुभ रात्रि। जय हिंद।